खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो विद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाणे।

आदि जगाद दया पत दाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता। तुदनो सेव है से तुझह संभाव है, तू आपे मेल मलाएंदा। अगम अगोचर कीमत नहीं पा।

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वडियाई। आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा। बाजे बाजे धुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा। कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा। करता करे सो निश्चो होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे। गुर प्रसादी किसे दे वडियाई, नामो नाम त्याएंदा।

0: गणत चकाए सच्चे सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा किल विख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन शीतल हुआ सहजी सहज समाएंदा
1: अंतर लोभ मन मैले मन लाए
0: मैले कर्म करे।

गुर शब्दी को पाईंदा, सतगुर सेवै सहज आनंदा, हृदय आए बुट्ठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराईंदा, सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया, आन दिन मारिय है दुख सबाया, मत्थे काले महल ना पावे, दुख ही विच दुख पाईंदा, सतगुर सेव है सेवद भागी, सहज पाए सच्ची लिवलागी, सचो

तुद्याई जिस भाणा भावै सो तुझै समाई भाणे विच वड्डी वड्याई भाणा किसै कराईंदा जां तिस भावै तां गुरु मलाई गुरमुख नाम पदारथ पाई तुदे आपणै भाणै सब सृष्टि अपाई जिसनु भाणा देह तिस भाईंदा मनमुख अंध करे चतराई भाणा ना मन्ने बहुत दुख पाई परमे पूला आवै जाए कर महल न कबहू पाईंदा सतगुर मेले दे वड्याई सतगुर की सेवा तुर फरमाई।

पारा निःचलवा सा पाईला अंतर कारबं के थान सुहाया गुरमुख विरलै किने थान पाया इत साथ निभ है सलाही सच्ची हर सच्चा।

अनदिन हर सेवियो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बलिहार है जाऊ गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊ तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचै नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग इहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसै बुझाएंदा एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिसिया पछताएंदा गुर

माया, दूजे पाए परम पलाया। हरना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा। जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान। हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा। बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए। जिन को नदर होवै गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा। काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवै वस्त संभाले। हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा। आपे सच्चा है सुख दाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता। नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पाएंदा। मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया। माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता। सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया। चारे वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार तिथि कर। इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार। राम नाम राखो उरतार, गुरबाणी वरती जागे अंतर। इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े हन दिन वाद समाले। नाम ना चेतै बद्दा जम काले, दूजे पाए सदा दुख पाए। त्रै गुण परम पलाएंदा, गुरमुख एकस स्यों लिवलाए। त्रिविध मनसा मन

आए हित रंग साचे माहे समाए पूरे भाग को एहो रंग पाए गुरमति रंग चढ़ाईंदा मन मुख बहुत करे अपमान

अंतर ज्योत शब्द सुख वसिया, ज्योति ज्योत मलाया, पंच दूत चितवह विकारा, माया मोह कायो पसारा, सतगुर सेवे ता मुक्त होवे, पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा, सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया।

रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गत हुए जे गुरमुख रह सरनाई गुरमुख प्रीत सदा है साची सतगुर ते मांगो नाम अजाची हो दयाल कृपा कर हर जियो रख ले वो गुर सरनाई अमृत रस सतगुरु चवाया दसवें द्वार प्रगट होए आया तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी सहज सहज समाई है जिनको करतै तुर लिख पाई अन दिन गुर गुर करत विहाई बिन सतगुर को सी जय नाही गुर चरणी चित लाई है जिस भावै

ज्ञान रतन मन परगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुर कहो सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी

सोवे गुरमुख नाम समाए समावे नानक नाम त्याई है भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आख बखाणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई है हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा कर हर जीओ सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता।

समाही सुकेते फुल हरिया कीतन हर त्यावो हो चोज वडाणी है। जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हों कुर्बान तिस आगे जन कर बेनंती। जो सर्व सुखा का दानी है जो जिया की सार ना जाने तिस स्यों किछ ना कहिए अजाने। मूरख स्यों नह लूज पराणी हर जपिय पद निर्वाणी है। ना कर चिंत चिंता है करते हर देवै जल थल जनता सब तै। अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखाणी है। ना कर आस मीत सुत पाई ना कर आस किसै सहा व्यवहार की पराई। बिन हर नावे को बेली नाही हर जपिए सारंग पाणी है। अन दिन नाम जप हो बनवारी

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जो शरण परै तिसकी पात राखै, जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै, गुर कै शब्द परम भउ भागै। विचे ग्रह सदा रह उदासी, ज्यों कमल रह विच पाणी हे।

तुझै तै करते हर अन देन नाम बखाणी हे। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का मैं हर बिन टेक धारे अवर ना का।

पद साध परम पद पाया, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानिए। तू सब मह वर्त है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी है। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय तरी जिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अगन उपाय ईंधन मह बांदी, सो प्रभ राखै पाई है। जी जंत को रिजक संबाहि, करण कारण समरथ अपाहि, खिन मह थाप यथापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्भ मह जिन प्रित पालिया, सास ग्रास होए संग संभालिया, सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब नवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्ब सुधारण, किस कीमत कही ना जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता, मात पिता सुत बंद पाई, जिन एह सृष्ट उपाई है। प्रभ आए सरना पहो नहीं करना, साध संगत निश्चो है तरना, मन बच कर्म अरादी करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पविया, दुख बनास किया सुख डेरा, ज्ञान तृप्त रहे आगाही है।

चिंता गणत मटाई है, हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है, हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वस हो घर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है, खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभे अपनी, सो जन तिसह त्याई है, बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले,

बनी प्रभ तेरी बिनस गई हो मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग मह सोभ सुहाई है जय जयकार जपो जगदीसै बल बल जाई प्रभ अपने ईसै इस बिन दूजा अवर ना दिसै एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता।

ग्रह पीतर जित उतरै भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म युग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगी तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् का रचन रचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हौ कित ही ना लिख वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कह आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु न समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊठ सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवै मनमुख जावै मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावै जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचड़ना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हर कवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देख बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाहि सच

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

पूर पंडार तृप्त रहे आगी जाहि। जाच है सिद्ध साधक बनवासी, जाच है जति सती सुखवासी। एक दा तार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाहि। कर है भगत अर रंग अपारा, खिन मह थापयो थापनहारा। भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगति जाहि। जिस देह दर्स सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग।

जिस चीते आवे है तिस भौ केहा, हवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरे ले टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हमयो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर भया अबनासी।

चढ़ै सवाया नित नित रंगा, कटै नाही तोली जाहि। बारहा कंचन शुद्ध कराया, नदर सराफ बन्नी सचड़ाया, परख खजाना पाया सराफी।

पदार्थ लहिए, जिसे आप पुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसह बुझाएंदा, हरख सोग का नगर एहु किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो गुर

मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नाम को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूजे त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजे। सतगुर साह भंडार नाम जिस एह रतन तिसै ते पायना। जाकी तूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावह मीता। सत पुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेट तपार परायना। पार जात लोड़ह मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु भय पार ब्रह्म होवह निर्मला तू। पारस जब भेटै गुरपूरा ता पारस परस दिखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी जानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाई हौ बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जाने है तो शमात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै। गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायना। संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना। निर्गुण को संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहलै लाए। पक्खा फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पायना। बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान देवायना। भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना। मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरह धरती अर आकाशा सिमरह चंद सूरज गुणतासा। पौन पानी बैसंतर सिमरह सिमरह सगले पार जना। सिमरह खंड दीप सब लोवा सिमरह पाताल पुरिया सच सोवा। सिमरह खानी सिमरह बाणी सिमरह सगले हर जना। सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरह देवते कोड़ ते तीसा। सिमरह जख दैत सब सिमरह अगंत न जाई जस गना। सिमरह पास पंखी सब भूता सिमरह बन पर्वत अवतूता। लता बली साख सब सिमरह रव रहे आस्वामी सब मना। सिमरह थूल सूखम सब जनता सिमरह सिद्ध साधक हर मनता। गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना। सिमरह नर नारी आश्रमा सिमरह जात जोत सब वरना। सिमरह गुणी चतुर सब बेते सिमरह रैणी अर दिना। सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा सिमरह काल अकाल सोच सोचा। सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलख ना लखिए एक खिना। करण करामन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। कर कृपा जिस भगती लाव हो जन्म पदार्थ सोजिना। जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरे करम गुर का जप जपना। सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुरना जो नी भरमुरना। गुर का शब्द वसै मन जाकै
दुख दर्द प्रमता का भाग सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रभ त्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन बूठा सो पूर कर्मा नाशिना जल पल महियल स्वामी सोई अवर्मा कही है दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काटे ओ ब्रह्म सगला अवर्णा दिसै एक बिना ऊचे ते ऊचा दरबारा कहन न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथाह स्वामी अतुल न जाई क्या मिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवरना कोई बिया आद मद अंत प्रव तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत तिस निकट न आवै साध संग हर कीर्तन गावै सगल मनोरथ ता के पूरन जो सर्वणी प्रभ का जस सुना तू सबना का सब को तेरा साचे साहिब गहर गंभीरा।

दीता करन करामन सब तू है नाहीं किस असाड़ा तुम है पठाए ता जग मह आए जो तुझ पाणा से कर्म कमाए तुझ ते बाहर किशु ना हुआ ता भी नाहीं किस काड़ा ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए इहां हर जस तेरा भणिए आपे लेख अलेख है आपे तुम सियो नाही किस झाड़ा तू पिता सब बारक थारे ज्यो खलावे है त्यो खेलन हारे उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना चले नाही कोवे पाड़ा एक बसाए रखे ग्रह अंतर एक पठाए देश दसंतर एक ही कौ घास एक ही कौ राजा इन मैं कही है क्या कूड़ा कमन सो मुक्ति कमन सो नरका कमन संसारी कमन सो भगता कमन सो दाना कमन सो होछा कमन सो सुरता कमन जड़ा हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका हुक्म संसारी हुक्मे भगता हुक्मे होछा हुक्मे दाना दूजा नाही अवर धड़ा सागर कीना आत तुम पारा एक खड़े रसातल कर मनमुख गावारा एक ना पार लंघावे आपे सतगुर जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुक्म पठाया जी जंत उपाए समाया विखै विगसै सब रंग माणी रचन कीना एक अखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई।

जिस जाई अग में अगोचर बे अंत अतोला है ना ही किस आहाड़ा कीमत कोई ना जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सो ज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरताई नियंतर आपे शीतल ठार गड़ा जिसह नवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकराई तिसह न आवै जम नेड़ा कीमत तागद कही ना जाई कहो नानक बे अंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसै कह निबेड़ा तिसै शरीक ना ही रे कोई किसे ही बुते जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवा अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मद सूदर दामोदर स्वामी रिखि केस गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारी जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया बनवाली चक्र पान दर्श अनुपया सहस नेतर मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साको गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल आनंद बनोदी निसंगा मोग दर्शन आजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किस तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी माश काश कूरम आग्या अवतरासी केशव चलत करह निराले कीता लोड़ है सो होएगा निराहारी निरवैर समाया धार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावह देण सुनत सब मोहैगा बनमाला बेभूखन कमल नैन सुंदर कुंडल मुकट बैन शंख चक्र गदा है धारी महासारथी सतसंगा पीत पितंबर त्रिपवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठला मैं गणत नाया वै सरबंगा निह कंटक निह केवल कहिय तनंजय जल थल है महिय मृत लोक पयाल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भगति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिले जिसे आप मलाहे आप हो कोहे न पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखाने सहस फनी सेख अंत न जाने नवतन नाम जपै दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जमदूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर रख हो साध संतन कह संग, संग।

गोविंद संतरेना मस्तक लाए परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्वला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेक मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारपत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर ना मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदै सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत धरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिलै महमौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथै खैरी पंजवै पंजे इकत मकामै एह पंज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुझ देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोर हो खाना गिल दरियाओ तो वो मैलाना पीर पछाणे पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवै अंतर की मल दिल ते धोवै दुनिया रंग ना आवै नेड़ै ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा जाको मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाय कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे उथापे साजे प्रभ की शरण गहत सुख पाईए किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटां का मालका चरण कमल सरन आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारे जप हर हर भौ नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु परकारी पालका किसह प्राप्त तो

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, गालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जयाल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खालका। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिन कै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरे नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदय नित तारी, गुर पूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनहु वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग भज चुत स्वामी, दरगाह शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन मह चाह, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत बेद बखानी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिए, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जूनी पावना, जिसनो बिसर पुरख बधाता, जलता फिर रह नित ताता, किरत कण को रख ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, किस स्यों प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरे ना लावना, तार अनग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कह नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है किसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, किस ही पुरख ना व्यापे माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवे ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जात कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बध कट है ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मन्यावना, अंध कूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे करे अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत सियो मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

गुर तीरक दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निहकंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बन आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर स्यों प्रीत उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटै मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन तृपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मन मुख मूरखा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादे उबरे जिन हर रस चखा आप कराए करे आप आपे हर

सेव गति गए। मर जन्म है फिर आवह सलोक महला तीजा। कागो हुए न उजला लोहे नाव ना पार। किरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार। कृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार। महला तीजा मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार। नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोय। नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर भेटे सोए। पौड़ी दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा। शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा। गुर सेवे शांत पाई है जप सास ग्रासा। सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हरदासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। सलोक महला तीजा। हुआ पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुख चार। नव खन मदे पूजिया अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस युग में नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चे पल्ल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिख विहाज है बिख संग्रह बिख स्यो तर है प्यार बाहर हो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यो चेतना लाइनी वादी धर्म प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल कर है आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए नानक एवै जानिए सब किश तिसै रजाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजै परम पलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलया प्रभयाई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय इत धन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आय जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदारह भुख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय सदा चिंत चित वधार है सहसा कदे ना जाय नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिने उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो किस बिन अवर ना कोई खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझिए जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई हौ मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै जिन चाखिया से निरपो भय से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। श्लोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी गुण ना व्याजै कोई गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्या सुख पाईऐ गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे नियाउ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराउ खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाउ सब सचो सच वर्तदा सदा सच नियाउ अमृत का रस आया
मन वसिया नाहू सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बुझो ज्ञानी बुझना ए कथ कथा मन माहे बिन गुर तत न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहु गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराए नानक सोहंग हंसा जप जप हो त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन बिरले जानी है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजल बिकम संसार पौड़ी मनमुख अंदर ना पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसे अग्गे नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोए किसनो कहिए नानका जा घर वरते सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांज धार सलोक महला पंजवां माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवई नानक नहीं करम महला पंजवा माया साथ ना चले क्या लपटावे है अंध गुर के चरण त्याए तू टूटे है माया बंद पौड़ी भाणे हुक्म मनायन भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेलियन भाणे सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया किन सच कमाया नानक किस शरणागति जिन जगत उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार सो ब्राह्मण भला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार अग्गे जात ना पूछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुआर नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझै खसम का सोई नर कच्चा जित पावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा ज्यो नानक आप नचाएंदा ते वही को नचा शुद्ध मारू वार महला पंजवां दखणे महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार महला पंजवां
नीहो मिहिंजा तौ नाल ब्या नेह कुड़ावे देख कप्पड़ भोग डरावणे जिचर प्री ना देख महला पंजवा उठी झालू कंतड़े हों पसी तौ दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हब रस चार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आग्या होए बेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया नवखंड पृथ्वी साज हर रंग सुवारिया वेकी जंत अपाए अंतर कल तारिया हेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया तू जाने है सब बेदयाप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक भोरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तौ मोहिया कद पसी जानी तोहे महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा पाओ है विछोड़ा हम रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपन कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवै है आप दयाल तिस लावै है सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछै कोई महला पंजवा हबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजै बिरथड़ा जो घर आवै चल महला पंजवा सेज वछाई कंतकू किया हब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरत है आप कुदरत देखावही तेरी भगत परे भंडार तोट ना आवही एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवै है आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही किस कदे ना आवै तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामु पसी हठ मैं प्री महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जो ई साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूष पर वेल ना जो हे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बिना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता
जो आप चलावे है त्यों चल दे, किस वस ना जनता दखणे महला पंजवां, कुरिए कुरिए वैद्या तल गाला महरीर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसंदो पेर, महला पंजवां, सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो, महला पंजवां, पोरे पोरे रूहड़े सिवेंदे आलक, मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवै रुत, पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा, ये मानस जाण है दूर तू वरत है जाहरा, तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा, तू पुरख आनंदी अनंत सब जोत समाहरा, तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा, क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा, जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा, सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा, दखणे महला पंजवां, गह डरड़ा तृण छाया गाफल जल्यों पाहे, जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे, महला पंजवां, नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद, बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद, महला पंजवां, नानक पुसरियां पकाइया पाइया थाले माहे, जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे, पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हों मैं पाइया, एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया, दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया, एन माया मोहनी मोहिया नित फिरह परमाइया, हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया, शिव अग्गे सकति हारिया केवै हर पाइया, इक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया, जल विचों बिंब उठालियो जल माहे समाइया, दखणे महला पंजवां, अगाहा कूतरांग पिछा फेरना मोहडड़ा, नानक सिज अवेहावार बहुड़ ना होई जन्मड़ा, महला पंजवां, सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित, हब्बे जानने अपना कहीं ना खाहे चित, महला पंजवां, गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया, सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया, पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा, तुद सब किस मैनू सौंपया जा तेरा बंदा, लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा, एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगै मंदा, लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा, आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा, सबे काज सवारे है जा तुद पावंदा, दखणे महला पंजवां, देखण को मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी, फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया, महला पंजवां, दुखिया दर्द घणे वेदन जाने तू तनी, जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीवसा, महला पंजवां, कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया, से ही रहे अमान जिन्ना सतगुर भेटिया, पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझिया सो चहो कुंडी जापै, जो नर उसकी सरनी परै किस कंबह पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै, जिन हर पाणा मन्या
तिस सोग ना संतापे, हर जियो तू सबना का मित है, सब जान है आपे, ऐसी शोभा जने की जे वडहर प्रतापे, सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापे, दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास, जिन्ना की मैं आसड़ी

पाइयो ना पाइये, बिन सतगुर मनुआ ना लगे, धर्म तीरा कल अंदरे, एहु पापी मूल ना तगे, एह कर करे सो एह कर पाए, एक कड़ी मोहत ना लगे, चारे युग में सो दिया, बिन संगत अहंकार ना पगे, हौ मैं मूल ना छुटई, बिन साधु सत संगे, तिचर था ना पावई, जिचर साहिब स्यो मन पंगे, जिन जन गुरमुख सेविया, तिस घर दी बाण अपगे, हर किरपा ते सुख पाया, गुर सतगुर चरनी लगे, दखणे महला पंजवां, लोड़ींदो हब जाए, सो मीरा मेरा नसिर, हठ मंझाहू सो तनी, चौंदो मुख अलाय महला पंजवां, माणकू मोहे माऊ, दिन्ना तनी अपाए, ह्याओ मिंजा ठंडड़ा, मुखों सच अलाय महला पंजवां।

पौड़ी मन लोचै हर मिलन कौ क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दस्यो हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्प्य हो हौ मैं तजो हो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखणे महला पंजवा मूथिया तख्त प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा जान मठाई इख बे पीड़े ना हुटै महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्बा नगरी सुख कटाऊ डुए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला नह पाईऐ प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलियै भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थीऐ कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाओ नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी मन रता कटंब स्यो नित गर्भ फिरामी फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचरदे फिर है संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर

सच्चा धनी पौड़ी निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा आवे जाए पवाईऐ बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदर हो थोथा कूड़े यार कूड़ी सब खचा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पातशाह देख तुर कर मचा जमदूती है हेरिया दुख ही मह पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखणे महला पंजवां परभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण त्याय जन्म मरण मल उतरै सच्चे के गुण गाय महला पंजवां देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया नानक सफल जन्म जय कट बुठा सच तनी महला पंजवां लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखणिया बयान जिनी दसंदो माफिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया इन सब सुख पाई ओह आप तरिया कटंब सियो सब जगत तराई ओन हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपहाई होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई दखणे महला पंजवां सच सुहावा कांडी है कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानी है जिन सच पल्ले हुए महला पंजवां सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सां सुतड़ी सो सहो डिठ तैं सुपने हौ खन्नीए महला पंजवां सज्जन सच परख मुख अलावण थोथरा मन मजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी पौड़ी तरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी काजी सेक मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कांबर औलिए को थिर ना रहासी रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अवनासी दखणे महला पंजवां डिठी हब टंडोल हिक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवां आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस आस निरासा हिक तू हौ बल बल बल गई आस महला पंजवां विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरे ओद बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोद पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी कोट ते तीसा देवते सन इंद्रै जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल है वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दीसै सो बिनसना सब बिनस बनासी थिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी सलोक दखणे महला पंजवां सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवां सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया महला पंजवां हिकस कूं तू आहे
पाषाणूपी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायणो हर अगम अगाधा निश्चल नाम निधान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टले ना टलादा निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुर साधा जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा सलोक दखणे महला पंजवा जोड़ बंदे आप सो तराए किनखे तारे दड़ो पी तार नानक पिर सिओ रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथन नाउ सुनंदो मां पिरी मूं जलाऊ तत नानक प्री पसंदो।

जिन्ना महबत एक से हो ते मानस प्रधान महला पंजवा। जिस मन वसै पार ब्रह्म निकट न आवे पीर, भुख तिख तिस न व्यापई जम नहीं आवे नीर पौड़ी। कीमत कहण न जाइए सच साहा अडोले, सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोले। पन्नण करण समरत है ओपत सब परले, कर्म कारण समरत है घट घट सब बोले। रिजक समाहे सब से क्या मानस डोले, गहर गंभीर अथाह तू गुण ज्ञान अमोले। सोई कम कमावना किया तुर मोले, तुदहो बार किस नहीं नानक गुण बोले। राग मारू बाणी कबीर जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंडिया कवन कमत तुम लागे, बूढ़ हो गे परवार सकल सिउ। राम ना जपो अपागे रहाओ, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण। खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। जी बद हो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई। आपस को मुनवर कर थापो, का को कहो कसाई। मन के अंधे आप ना बूझो, काहे बुझावो पाई। माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिथा जाई। नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई। कह कबीर रामै राम छूटो, नाहे ता बूढ़े पहाई। बनह बसे क्यों पाईए जौलो मनहु ना तजह बेकार। जेह घर बन समसर किया ते पूरे संसार। सार सुख पाईए रामा रंग रवहो आत्मै राम रहाओ। जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा महबास। मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते होए उदास। अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माए बिडान। ज्ञान अंजन जेह पाया ते लोइन परवान। कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए। अंतरगत हर पेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए। रिद सिद्ध जा को खुरी।

कारण कर्म तबे लग कही है, जब लग तत ना जानिया, अब तो बिमल भये घट ही मह, कह कबीर मन मानिया, जिन गढ़ कोट किए कंचन के, छोट गया सो रावन, काहे कीजत है मन पावन, जब जम आए केस ते पकरे, तह हर को नाम छडावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना, एहो परपंच बधावन, कह कबीर ते अंते मुक्ते, जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो, बसह पंच किरसाना, नैनू नक्टू सर्वनू रसपत, इंद्री कहया।

धर्मराय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पहारी पांच किरसानवा भाग गए लह बांधे हो जी हो दरबारी कह कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो निबेरा अब की बार बख्श बंदे कहो।

प्रसाद। अनपहु किने ना देखिया बैरागी अड़े, बिन पै अनपहु होए वणा हंबे। सहो हदूर देखे ता पहु पवे बैरागी अड़े, हुक्मे बूझे ता निरपो होए वणा हंबे। हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े, पाखंड रत्ता सब

मूर्ख मुग्ध ग्वार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार राग मारू बाणी जय देओ जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़ सा दत किया अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया अकड़ घड़िया तह अपियो पिया मन आदि गुण आदि विखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट समानिया रहाओ अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया सलल को सलल सम्मान आया बदत जय देव को रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया कबीर मारू राम से।

राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माते शतर तरै रहाऊ।

सागर सुर तर चिंता मन काम तेन बस जा केरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल कै हर हर हर ना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाउ नाना ख्यान प्राण वेद विद चौतीस अक्षर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद अपाद रहत हुए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी तुखारी संत महला पहला बारह माहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सुन किरत करमा पुरब कमाया सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला हर रचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन घड़ी ना जीवा प्रिय बाज दहेली कोई ना बेली गुरमुख अमृत पीवा रचना राच रहे निरंकारी प्रभ मन कर्म सुकर्मा नानक पंथ निहाली सा धन तू सुने आत्म रामा बाबीहा प्रियो बोले को किल बाणिया सा धन सब रस चूले अंक समाणिया हरे अंक समाणी जा प्रभ पाणी सा सुहागण नारी नव कर थाप महल कर ऊंचो निज कर वास मरारी सब तेरी तू मेरा प्रीतम निसबासुर रंग रावे नानक प्रियो प्रियो चवे बबीहा कोकिल शब्द सुहावे तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम अपने मन तन रवतर वन्ने घड़ी ना बिसर क्यों घड़ी बिसारी हों बलिहारी हों जीवा गुणगाई ना कोई मेरा हों किस फेरा हर बिन रहन ना जाए ओट गही हर चरण निवासी भये पवित्र शरीरा नानक दृष्ट धीरग सुख पावे गुर शब्दी मन तीरा बरसै अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुभाए हर सिओ प्रीत बणी हर मंदर आवे जा प्रभ पावे तन उभी गुण सारी घर घर कंत रवै सुहागण हौ क्यों कंत वसारी उन्नव घन छाए बरस सुपाए मन पन प्रेम सुखावे नानक वरसै अमृत बाणी कर कृपा घर आवे चेत बसंत भला भवर सुहावड़ी बन फूले मंज भार मैं फिर घर बहुड़ै फिर घर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे बिरह विरोध तन सीजै कोकिल अंब सुहावी बोले क्यों दुख अंक सही जै पवर पवंता फूली डाली क्यों जीवा मर माए नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वार घर धन पाए वैसाख भला साखा वीस करी धन देखे हर द्वार आवुह दया करी कर आओ प्यारे दुत्तर तारे तुद बिन अड ना मोलो कीमत कौन करे तुद पावा देख दिखावे ढोलो दूर ना जाना अंतर माना हर का महल पछाना नानक वैसाखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन माना माह जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे थल ताप है सर भार सा तन बिनो करे तन बिनो करेंदी गुण सारेंदी गुण सारी प्रभ पावा साचे महल रह बैरागी आवन देहे ता आवा ने माणी ने ताणी हर बिन क्यों पावे सुख महली नानक जेठ जाने तिस जैसी कर्म मिले गुण गहली असाड़ भला सूरज गगन तपे धरती दुख सह सुख है अगन पख है अगन रस सुख है मरिय धूख है पी सो किरत नहारे रथ फिर छाया तन ताक है तीद लवे मंज बारी अवगण बांध चली दुख आगे
सुख किस साच संभाले, नानक जिसनो एहो मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले, सावन सरस मना, कण वरस है रूते आए, मैं मन तन सहो पावे, फिर परदेस सिधाए, फिर घर नहीं आवे, मरिए हावे, दामन चमक डराए, सेज अकेली खरी दोहेली, मरण पया दुख माए, हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन ना सखावे, नानक सा सुहागन कंती, फिर कै अंक सुमावे, पादो परम पुली, पर जोबन पछताणी, जल थल नीर भरे, बरस रुते रंग माणी, बरसै निसकाली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रियो प्रियो चवै बबीहा बोले, पोयंगम फिर हैं दसंते, मच्छर डंग शायर भर सपर, बिन हर क्यों सुख पाई, नानक पूछ चलो गुरे अपनी, जह प्रभ तह ही जाइए, असन आओ पिरा सा तन झूर मुई, ता मिलिए प्रभ मेले दूजे पाए खुई, झूठ बिगुती ता पिर मुती, कुका कहा से फुले, अगे काम पिछे रुत जाडा, देख चलत मन डोले, दह दिस साख हरी हरियावल, सहज पक्कै सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे, सतगुर पए बसीठा, कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया, दीपक सहज बलै तत जलाया, दीपक रस तेलो तन पिर मेलो, तन अमा है सरसी, अवगुण मारी मरै ना सीजै, गुण मारी ता मरसी, नाम भगत दे निज कर बैठे, अजहो तनाड़ी आसा, नानक मिलो हो कपट दर खोलो हो, एक घड़ी खट मासा, मगर माहो भला, हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे, मैं फिर निश्चल पावे, निश्चल चतुर सुजान बधाता, चंचल जगत सवाया, ज्ञान प्यान गुण अंक समाणे, प्रभ पाणे ता पाया, गीत नाद कवित कवे सुन, राम नाम दुख भागै, नानक सा तन नाह प्यारी, अब भगती पिर आगै, पोख तखार पड़ै, वन त्रिण रस सुखै, आवत की नाही, मन तन वसह मुखे, मन तन रव रहे आ जग जीवन, गुर शब्दी रंग माणी, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, कट कट जोत समाणी, दर्शन देहो दया पत दाते, गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया, हर सिओ प्रीत स्नेहो, माघ पनीत पई, तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले, गुण गह अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके, तुद पावा सर नावा, गंग जमन तह बेणी संगम, सात समुंद समावा, पुन दान पूजा परमेश्वर, जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारास हर जप, अठ सठ तीरथ नाता, फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अन दिन रहस पया आप गुआया, मन मोह चुकाया जां किस फाया, कर कृपा कर आउ, बहुते वेस करी पिर बाजू, महली लहा ना थाऊ, हार डोर रस पाट पटंबर, पिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेल लई गुर अपने, घर वार पाया नारी, बेदस महारुती थिती वार भले, घड़ी मूर्त पल साचे, आए सहज मिले, प्रभ मिले प्यारे कारज सारे, करता सब बिद जाने, जिन शिंगारी तिसह प्यारी, मेल पया रंग माने, कर सेज सुहावी जां पिर रावी, गुरमुख मस्तक भागो,
नानक ऐन सरावै प्रीतम हर वार फिर सोहागु। तुखारी महला पहला, पहले पहरे नैन सलोनड़िए,

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूझै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया जाग अचेती राम, वखर राख मुइये खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुर हेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावै, नानक मूर

पैर भया दौत बिहागै राम तिन घर राखियड़ा जो अन दिन जागै राम गुरपूछ जागे नाम लागे तिन्ना रहन सुहेलिया गुर शब्द कमावह जन्म ना आवह तिन्ना हर प्रभ बेलिया कर कंप चरण शरीर कंपै नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसे ना सुनिए अपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया

ते मन मानिया जिन जल थल त्रे भवन घट घट थापिया सो प्रभ गुरमुख जानिया करन कारण समरथ अपारा त्रे विद मेट समाई नानक अवगुण गुण।

है साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिले विशुनी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रोस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी।

लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जां तिस पाया जां प्रभ कृपा तारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिय सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारी शब्दे रव रहिया गुर रूप मरारी त्रि भवन धारी ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंत अपाई नित देवै चढ़ै सवाया अपरंपर आपे थाप उथापे तिस भावै सो होवै नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवै गुण गुणै समाणी मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता सच राता

प्यारी सच कर खोज लहे साचा गुर थानो मनमुख नह पाईए गुरमुख ज्ञानो देवै सच दानो सो परवानो सद दाता वड दाना अमर अजोनी अस्थिर जापै साचा महल चिराणा दोत उचापत लेख न लिखिए प्रगटी जोत मरारी नानक साचा साचै राचा गुरमुख तरियै तारी तुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अचेत अयाणिया राम ए मन मेरिया छड अवगण गुणी समाणिया राम बहु साद लुभाने किरत कमाणे विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरियै जम डर मरियै जम का पंथ दहेला मन राम नहीं जाता सांझ पर भाता अब कट रुदा क्या करी बंधन बांधे।

अल्लाह राम हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अग्न भांदे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो सखा सैन प्यार प्रीतम नाम हर

राम गुण गाए राम रसाए रसिय है गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारहे।

गुर शब्द सुरत लंघावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

जब लग दर्स ना होए क्यों अमृत पीवी राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुर बिटहु कुमाई, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिए राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड़ निस्तारिए राम, हम मूड़ मुगद किशमित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे, हुण तौ शरणागत आई, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लाग है सतगुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाए, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास वसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देओ, जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे, तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपर परा, जो तुम प्यावे जगदीश, ते जान पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहिला, जिन हर हर नाम त्याया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर तरनी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेओ अगम, गुर सतगुर बचन लहया, धन धन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जा बह गुरमुख हर नाम बोले, जा खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अराध्या, तिनका जन्म सफलियो सब किया करते, जिन गुरबचनी सच भाखिया, ते धन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरे आप, ज्यों तू चलावह प्यारे हो तिवें चलना, हमरे हाथ किछ नाही, जा तू मेलह ता हो आए मिला, जिनको तू हर मेलह स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तनी ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या।

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर महाजना गुर सतगुरु ओट गही गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद।

सुन प्रभ मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनिजै तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

हित चिता, प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावै प्राणी, जेहा तू फरमाए जा को कृपा करी जगदीश्वर, किन साध संग मन जिता, कहो नानक जीअड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ताक लिया मोहे पापी पड़दा, ताक नहारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, अवनासी अवगत स्वामी, पूर्ण पुरख बिदाते, उस्तत कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का।

रमहु रे अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अब गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमर।

तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं उपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंदन करना पति भाव हरन हर हर हर हर।

साध संग मन लाभ ब्रह्म भउ मोह कट्यो गुरबचनी अपना दर्श दिखावहु सब की रेन होए मन मेरा अहम बुद्ध तजावहु अपनी भगत देह दयाला वडभागी नानक हर पावहु किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाऊ धन जोबन संपै सुख भोगवै संग न निबहत मात मृग तृष्णा देख रचियो बावर द्रम छाया रंग रात मान मोह महा मद मोहत काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात केदारा महला पंजवा हर बिन कोई ना चाल साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी अनाथा के नाथ रहाउ सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ नाम नदान गाओ गुण गोबिंद उदर सागर के खात सरल समरथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन तूर जन बाछत मिले लिखत तुर माथ किदारा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाही मन ते हरी अब ए प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चातरक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना तेव एहे परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी।

रहाउ। अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारु तूर, संत संग हर चरण बोहित उदर तेल मोर। गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर, हर सकत सरन समरत नानक।

सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दूरंत आसा झूठ सर परमान सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार रहाऊ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपज तो बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार सुख मंगल अना

पूर रहया सर्वत्र मैं सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत सोभा पावै दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवै हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह न जाए न खेदया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावै ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावै खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारे निर्गुण नीच अनाथ मैं नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

बिन पानी। चलत कत टेडे टेडे टेडे, हस्त चरम बिस्टा के मुंडे, दुर्गंध ही के बेटे रहाओ। राम ना जप हो कमन भ्रम भूले, तुम ते काल ना दूरे, अनक जतन कर एहो तन राख हो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु ना होवे, क्या को करे प्राणी, जां तिस भावे सतगुर भेटै, एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ मह बसते, फुलवत देह।

खान, पाउ भगत स्यों काज न कछु है, मेरो काम दीवान। राम बसारियो है अभमान, कनक कामनी महासुंदरी, पेख पेख सच मान रहाव, लालच झूठ बिकार महामद, एह बिद औद बिहान। कह कबीर अंत की बेर, आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लै जाए रहाव। गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लव संग माए, मरहट लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर न देखे आए। कहत कबीर राम की ना सिमरहो, जन्म अकारथ जाए। राग के दारा बाणी रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही। चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल।

पद है अमरेऊ, राम भगत बसेख रहाउ, स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावै हेत, लोग बपरा क्या सरा है तीन लोक प्रवेश, अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर कै पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरह रविदास, राग भैरू महला पहला घर पहला चौपदी,

क्या कही है किस कही ना जाए, जो किस अहै सब तेरी रजाए रहाओ, जो किस करना सो तेरे पास।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालु प्राणी, हर जप जन्म गयो साच, शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ, तन में है काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरो महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पए बहरे, मनमुख

जिहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा, भैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही, दिन सजंजाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपहु गुणकारी, रहाउ ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधै सिर धंधा, काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावै गल फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई, खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे, शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने, भैरू महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती, राम रसल रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावै, आप मार अपरा

हे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाऊ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत कै बांधे भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया। राग भैरो महला तीजा चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा रहाउ। चारे वर्ण आख सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुमारा। पंच तत् मिल देही का अकारा घट वध को करे बीचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा जोगी गिरही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी। माया मद माता रहया सोई जागत रह ना मूसे कोई रहाउ। सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे। सो जागे जो तत बीचारे आप मरे अवरा नह मारे। सो जागे जो एको जाने पर किरत छोड़े तत पछाण। चहो वरना विच जागे कोई जमे काले ते छूटे सोई। कहत नानक जन जागे सोए ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। भैरो महला तीजा जाको राख है अपनी सरनाई। साची लागे साचा फल पाई रे जन कैस्यो करो पुकारा। हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा रहाउ। एहो आकार तेरा है तारा खिन में बिनसै करत ना लागे बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया गुर कृपा ते परम पद पाया।

व्यापी तृष्णा जलह अधकाई मर मर जम्मह ठौर न पावह बिरथा जन्म गवाई मेरे प्रीतम कर कृपा देहु बुझाई हऊ मैं रोगी जगत उपाया बिन शब्द रोग न जाई रहा सिमरत शास्त्र पढ़ मुन केते बिन शब्द सुरत ना पाई।

हर का नाम निदानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरत है तिन निज कर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्ण रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझे है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे ना कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुरु पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारी सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाईए। पूरे भाग मिले प्राप्त।

भूत मलाय सो प्रभ सात्या सद ही सात्या सात्या सब अकारा नानक सतगुर सोजी पाई सच नाम निस्तारा। भैरव महला तीजा कल मह प्रेत जिन्नी राम ना पछाता सतयुग परमहंस बीचारी द्वापर त्रेतै मानस वरतै विरलै होमै मारी कल मह राम नाम वडियाई।

नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगुण शब्द जलाई। जिन मन वसिया से जन सोहे, हृदय नाम वसाई। घर दर महल सतगुरु दिखाया, रंग सोरलिया माण। जो किश कह सो भला कर मान, नानक नाम बखाण। भैरों महला तीजा, मनसा मन है समाये लै। गुर शब्दी विचार, गुर पूरे ते सो जी पवे। फिर मरे ना वारो वार, मन मेरे राम नाम आधार। गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच्छ पजामन हार रहाऊ। सब मह इको रव रहिया, गुर बिन बूझ ना पाई। गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ, अन दिन हर गुण गाई। सुख दाता हर एक है, होर थै सुख ना पाए। सतगुर जिनी ना सेव्या दाता, से अंत गए पछताए। सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख ना लागे ताए। नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति ज्योत समाई। भैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना। भूला चोटा खाई, मर मर जमे सदा दुख पाई। डर की खबर ना पाई, मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना। हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ। पेख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार। अंतर तिसा भूख अत बहुती, भौंकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरह फिर जीव है, तिनको मुक्त द्वार। अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राखिया उरतार। ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, करना किछु ना जाई। नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वडियाई। भैरों महला तीजा, हम मैं माया मोहे खोआया। दुख खटे दुख खाई, अंतर लोभ हलक दुख भारी। बिन विवेक परमहाय, मन मुख त्रिक जीवन संसार। राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर स्यों कदे न लागे प्यार। रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै,

अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचरायन जन्म मरण ते रहत नारायण रहाव कर पंजीर खवायो चोर ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर सगल पराध देह लो रोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी जन्म ना मरे ना आवे ना जाए नानक का प्रभ रहो समाए पैरो महला पंजवा उठत सुखिया बैठत सुखिया।

सोई अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता कर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया भैरू महला पंजवां वर्त ना रहो ना महर मंदाना तिस सेवी जो रखे निधाना एक गुसाई अल्लोह मेरा हिंदू तुर्क दुहान बेरा रहाव हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा एको सेवी अवर ना दूजा पूजा करो ना निवाज गुजारो एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण कहो कबीर एहो किया वखाना गुर पीर मिल खुद खसम पछाना भैरू महला पंजवां दस मिर्गी सहजे बंद आनी पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी संत संग ले चढ़ियो शिकार मृग पकरे बिन घोर हथियार रहाओ अखेर बिरत बाहर आयो ताए अहेरा पायो कर कह गाए मृग पकरे कर आने हाट चुख चुख ले गए बांडे बाट एहो अहेरा कीनो दान नानक कह कर केवल नाम भैरू महला पंजवां जे सौ लोच लोच खावाया साकत हर हर चीत नाया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया नह पीजै अधिक सुकाया खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया जैसे दह दिस पवन चुलाया बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया त्यों साकत ते को ना ब्रासाया कित ही लागा जित को लाया कहो नानक।

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिस की गत होवै।

सच्चे पातशाह ने तरिया तर पनाह खुदाई गरीब नवाज दिन रहन ते आए नानक को खुद खसम मेहरवान अल्लाह ना विसरै दिल जी प्राण भैरो महला पंजवां साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का भाणा सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवो हर हर हर हर रसना कहो रहाओ कल युग मह एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म बीचार भैरो महला पंजवां सतगुर सेव सर्ब फल पाई।

सोभा पावे प्रभ के द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरो महला पंजवां, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी तेरा के नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाऊ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो महला पंजवां, चौपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करह।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पई सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

पेखियो नत नाटक निरताई। चहो मह पेखियो खत मह पेखियो दस अस्ति सिमरताई। सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहूं दुराई। अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई। जन नानक तिन कह बल बल जाइए जेह घट प्रगति आई। भैरू महला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे। बिक संचै नित डरता फिरे है निकते अर भेद ना पाया। बिन सतगुर सब मोही माया नेड़े नेड़े सब को कह। गुरमुख भेद बिरला को लह रहाउ निकट न देखे पर ग्रह जाई। दर्भ हिरै मिथ्या कर खाई। पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया। निकट न जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड। अंतर वस्तद संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाई। जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करहे सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोए। क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तौ कड़िया जे हुवे बाहर, तौ कड़िया जे विसरे नरहर, तौ कड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहया समाए, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तौ कड़िया जे दूजा करता, तौ कड़िया जे अन्याय को मरता, तौ कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तौ कड़िया जे किस होए तिंगाने, तौ कड़िया जे पूर रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यो पावे त्यों करह निबेरा, दुतिया नास्त एक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई। पहरू महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी, जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरते सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जिहवा कहां को बकता, बिन श्रवना कहां को सुनता, बिन नेत्रा कहां को पेखे, नाम बिना नर कहीं ना लेखे, बिन विद्या कहां कोई पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हौ त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान,

दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

बंदन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मटाया। भैरव महला पंजवां, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज। चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबह ना झूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ। चीत आवे ता सर्ब को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा। चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सद तनवंता, चीत आवे ता सद निपरंता। चीत आवे ता सब रंग माणे, चीत आवे ता चूकी काणे। चीत आवे ता सहज घर पाया, चीत आवे ता सुन समाया। चीत आवे सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता। पैरो महला पंजवां, बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी। मीत हमारे सदा अबनासी, कुटुंब हमारा निज घरवासी। हम सुख पाया।

अंत अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भये दयाला। नानक दास देख भये निहाला, भैरो महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाऊ। सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत ज्ञान रहाउ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना। नाम लैत

मोहे दुहागने आप सिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिटयो दुख अर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर भये परगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

बहुत निदान, जां को सतगुर दियो नाम, जां को भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन सीतल हर हर जपना।

आवै बेसवा भजत किस नह शरमावै सारो दिन समजूरी करै हर सिमरन की वेला बजर सिर परै माया लग भूलो संसार आप भलाया भलावन हारै राज रहिया बिरथा व्यवहार रहाउ देखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करै कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मन तावै करने हार न जी मह आवै करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत न कारज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ ज्यो जल बिन मीना जिसके राखे होए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरो महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जप हो नित पाई तार लए सागर संसार रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान सीजन दरगाह पावह मान सुख सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न थावे थाओ जुगह जगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार जिस लड़ लाए लए सो लागे जन्म जन्म का सोया जा।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे की नो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा सार, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

सुख होए, कर कृपा जा को मिले सोए, रहाओ जाके कर्तव लखे ना जाहे, जाका परवासा सब घट माए, प्रगट भया साधु कै संग, भगत अराध अन दिन रंग, देंदे तोट नहीं पंडार, जिन मह थाप्यो

की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरू महला पंजवा, रूवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन री जावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोई, पूर्ण काज ताही का होई।

मन तन नानक हर गुण गाओ साधु संग जिस देवै नाओ भैरू महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहि निर्मल मना।

तुम थान बैठावो, दास अपने को भगती लावो, नमाणे को प्रभ दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुगयान, सगल पयान का पौ नसै, जाने अपने कै हर मन बसै, पार ब्रह्म प्रभ।

नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल मह हर मन वसै संत मंडल मह दुर्त सब नसै संत

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का नेह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ देख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए, रहाउ अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

बस है माने आई सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गात हुए रहाव पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा।

बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख, काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करण हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवा, गुरसो प्रसन्न हुए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद घने, साध संग मिटे भय भरमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महा परेत, आठ पहर हर हर।

नानक पाया नाम निदान पैरो महला पंजवा करन कारण समरथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै भंजन अविनाशी राय दर्शन देखे है सब दुख जाए जत कत देखो तेरी सरना बल बल जाई।

ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रव्यास होए नानक सब किछ प्रभ ते होए पैरो महला पंजवां मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंता।

जन धन भैरु महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भय बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाय।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखे हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन।

त्रिहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती

नहीं भंग पैरो महला पंजवा निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को राखनहार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे निंदक को दई छोड़े नाहीं हर का दास किस बुरा ना मांगे।

काल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रतपाल प्रभ कृपाल कमन गुन गुनी अनक रंग बहुत रंग सर्ब को तनी रहाओ अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप जाप ताप अनक गुणत तुनत ललत अनक तार मुनि अनक नाद अनक बाज निमख निमख अनक स्वाद अनक दोख अनक रोग मिट है जस सुनी नानक सेव अपार देव तटह खटह बरत पूजा गमन पवन जातर करन सगल फल पुनी पैरों अष्टपदियां महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर बीचारा अमृत बाणी शब्द पछाणी दुख काटे हो मारा नानक हो।

ताक ना हुई जिनको नदर पई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई पौन पानी बै संतर रोगी रोगी तरत सपोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरदरा रोगी सगल संसारा हर पद चीन पए से मुक्ते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुंद सनदियां खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साच सुहेले सर्वी थाई नदर करे रोगी खट दर्शन भेख तारी नाना हठी अनेका वेद कतेव करह कह बपरी नह बूझह एक एका मिठरा सखाए सो रोग परिजय कंद मूल सुख नाही नाम विसार चल है अन मार्ग अंत काल पछताही तीरथ पर मैं रोग ना छूटस पड़या बाद विवाद भया दुबदा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द सला है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन अन दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया पैरो महला तीजा कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद तिन करता एक चलते उपाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मनमुख फूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया गुर का शब्द मेरा अंतर ध्यान हों कबहु ना छोड़ो हर का नाम रहाओ पिता प्रहलाद पढ़न पठाया लै पाती पांदे कह आया नाम बिना नह पढ़ो अचार मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मरार पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए परवृत ना पढ़ो रही समझाए

सब नगरी मह भगत बिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई। संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार। भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई। किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पलाया। पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया। प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला। निरपो बालक मूल ना डरई,

भगता मन आनंद बजी वधाई अपने सेवक कौ दे वडियाई जम्मन मरना मोह उपाया आवण जाना करतै लिख पाया।

निवार, माता नरसिंह का रूप निवार, लक्ष्मी भौ करे ना साके जाए, प्रहलाद जन चरणी लागाए आए, सतगुर नाम निदान दिरडाया, राज माल झूठी सब माया, लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

सूझै दुर्मत अज्ञान अंधारा भवजन पार न पावह कबही डूब मुए बिन गुर सिर पारा साचे शब्द रते जन साचे हर प्रभ आप मलाई गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे निवलाए तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर कै शब्द विचारे नानक तिन कै सद बलिहारे राम नाम उर तारे पैरों।

सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाई, नाम बिना जन्म बिरथा जाए, इस सलाही जिस हर तन रास, सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाउ, जिस नाम हृदय तिस कोट कई सेना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना, जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीवन मुआ, जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता।

वे परवाहा। जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन।

कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो धनी गोविंद।

सिह जाए, कोट अपार जना तेरा अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माहे, कोट नाम जाकी कीमत नाही, कोट पूरियत है जा कै नाद, कोट अखारे चलत बिस्माद, कोट सकत सिव आज्ञाकार, कोट जी देवे आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट विस्थारन अवर ना दूजा, कोट महिमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस, कोट परलो उपत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे, कोट ज्ञानी कथह ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान, कोट तपीसर तप ही करते, कोट मनीसर मोन मह रहते, अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया घट अंतर जा।

बहर किस संग मन राती रहाओ। अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ। अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार। अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे। अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता। अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा। अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हमको गुर दीनो मंत। अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर। अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा। अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा। अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे। अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना। अचिंतो उपजियो सगल बिबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका। अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिल्यो प्रभ ठाकुर एक। चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई। भैरों बाणी भगतां की, कबीर जियो घर पहला।

सात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का पया मूर्ख रावण क्या ले गया कह कबीर।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अल कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो।

जाना, जो हो बोरा तो राम तूरा, लोग मर्म कह जाने मोरा रहाऊ, तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन।

जो निर्तन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर तन

सो देही पज हर की सेव, पजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो रहाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज लेहे रे मन सारिंग पानी, अब ना भजस भजस कब भाई।

हरि आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पात्र बोले ना किश दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कमन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापी।

जाति साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

पार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिव लाए, सतर साई सलार है जाकी, सवा लाख पैकंबर ताकी, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर।

गढ़बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरे ओ गढ़ को राजा, भगवत पीर

पासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथारह पार, कोट कमेर परह पंडार, कोटक लक्ष्मी करै श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहु हिरै, इंद्र कोट जाके सेवा करह, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लट छूटी वरतै बिकराल, कोट कला खेलै गोपाल, कोट जग जाके दरबार, गंधर्व कोट करह जयकार, विद्या कोट

पर हरि ताके निकट बसै नर हरि जो ना पुजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाऊ जिनके पीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए ना मैं दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लैना मैं हर आगे तरी एक भगत मेरे हृदय बसे नामे देख नारायण हसे दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ताको करो श्रृंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ बाद बार काहू स्यो ना कीजे रसना राम रसायन पीजे अब जी जान ऐसी बन आई मिलो गोपाल निशान बजाई उस्तत निंदा करे नर कोई नामे श्री रंग पेटल सोई कबहू खीर खांड की हो ना पावे कबहू घर घर टूक मगावे कबहू पूर्ण चने बिनावे ज्यों राम राखे त्यों रहिए रे भाई।

सब राजे बिनती करे पटराणी, भूत प्रहलाद कहया नहीं माने, तिन तो अवरे ठानी, दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर सह औध कनेरी, गिर तर जल ज्वाला पह राखियु, राजा राम माया फेरी, काड खड़ग काल पह कूपियो, मोहि बताओ जो तुहे राख है, पीत पितांबर त्रे पवन तनी, थंब माहे हर पाख है, हर नाखश जिन नखह बिदारे हो, सुर नर किए सनाता, कह नाम देहु हम नर हर त्याव है, राम अपै पद दा

गोपाल गंग जमन जोल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजो ना आयो त्रे पवन तनी पाखन तन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह

दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की कट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किस

होई, पारस परसै दुबदा ना होई रहाउ। सो मन मन की दुबदा खाई, बिन द्वारे त्रै लोक समाए। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हुए सो अन पै रह। फल कारण फूली बन राय, फल लागा तब फूल बलाय। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नास। कृत कारण

बिन बूजे सब खड़ी अस बंद जेते जी लिखी सरकार करनी ऊपर हो वगसार हुक्म कर है मूर्ख गावार नानक साचे के सिफत पंडार बसंत महला तीजा बस्तर उतार दिगंबर होग जटा धार क्या कमावे जोग मन निर्मल नहीं दसवे द्वार प्रम प्रम आवे मूड़ा वारो वार एक त्यागो मूड मना पार उतर जाहे एक खिना रहाउ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़े पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिनकै रमैया नेड़ नाई जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे अंतर लोभ मन बिख्या माहे ओए निरंजन कैसे पाहे।

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए, जाको तू रख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब दू

न खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर किरपा हर भगत दृढ़ाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलै रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब जी जंत क्या हो आखा किरम जंत तेरा किन न पाया आदि अंत तै साहिब की करह सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म हुआ ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देख अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावै तिसै खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों पावै त्यों राखै सोई।

लोभ लुभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा गुरु।

तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वडभागी तारे जन नानक उर हरि अमृत धारी बसंत महला तीजा हर सेवे सो हर कालोग साच सहज कदे ना होए सोग मन मुख मोए नाही हर मन माही मर मर जम्मह पी मर जाही से जन जीवे जिन हर मन माहे साच सुमल है साच सुमाहे रहाउ हर ना सेवह ते हर ते दूर दसंतर भवह सिर पावह धूर हर आपे जन लिए लाए तिस सदा सुख है तिल ना तमाए नदर करे चूकै अभमान साची दरगाह पावै मान हर जियो वेखै सद हजूर गुर कै शब्द रहया परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सद संभाल दर साचै पत स्यों घर जाई नानक नाम वडाई पाई बसंत महला तीजा अंतर पूजा मन ते होए एको वेखै और ना कोई दूजै लोकी बहुत दुख पाया।

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नावे सूका संसार अग्न तृष्णा जल वारो वार सोई करे जे हर जियो पावे

मन आई। बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाई, मन तन हरिया सतगुर पाई। सफलो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार। ए मन हरिया सहज सुपाई, सच फल लागे सतगुर पाई। रहाउ आपे नेड़ आपे दूर, गुर कै शब्द वेखै सद हजूर। शाम घणी फूली बन राए, गुरमुख बिबसै सहज सुपाए। अन दिन कीर्तन करह दिन रात, सतगुर गवाई विचों झूठ परांत। परपंच वेख रहया विस्माद, गुरमुख पाईऐ नाम प्रसाद। आपे करता सब रस भोग, जो किछ करे सोई पर होग। वड्डा दाता तिन नात माई, नानक मिलिया शब्द कमाई। बसंत महला तीजा पूरै भाग सचकार कमावे। एको चेतै फिर जोन ना आवे, सफल जन्म इस जग में आया।

नाम रता जन प्रगट हुए, एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचै पाए, साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा हुए, जिन साच सेवया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, पगत करह जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव लाई।

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा होए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए, होर

तीजा बनस्पत मौली चढ़िया बसंत इहु मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच त्याव हो मुग्ध मना ता सुख पाव हो मेरे मना रहाऊ इत मन मौलिया भया आनंद अमृत फल पा।

मुख पान्य हर उस्तत धारु हो रे दे अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लान्य हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विट्टो हो कुम वान्य जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हो हर लान्य जन नानक मन तन आनंद भया है गुरमंत्र दियो हर भान्य।

नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाऊ नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

तम प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जा को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जा के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के

मीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर होहे फिर दान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग होहे जिस प्राणी।

जिसके तारे तरन आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंतकाल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद

जहां गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करनहार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो ध्यान।

जन प्रभु आप रखे दुष्ट दूत सब भ्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दसंतर रहे ताई किरत ओना का मिटस नाही वे अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुंच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतने आप

पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवै बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवै जावै रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोबिंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल एहो मन होआ साध तूर नित देखै स्वामी हजूर काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई

सदब संत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ सोग संताप कटे प्रभ आप गुरे अपने को नित नित जाप जो जन तेरा जपे नाऊ सब फल पाए निश्चल गुण गाओ नानक भगतां।

फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो हो प्रभ सुभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा कर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामै के हो वो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा।

कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करहो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इशनान करहो प्रभाते, सोए हर अरादे, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते, हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी घर आया।

बसंत हंडोल महला पंजवा मूल ना बूझै आप ना सूझै भरम व्यापी अहंग मनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाउ ओपत परलो प्रभ ते होवै एह बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते कलम है सुखिये से जनी अवर अपाओ न कोई सूझै नानक तरियै गुर बचनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हंडोल महला नौवा साधो ए तन मिथ्या जानो जा भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ एहो जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो संग तिहारै कछु ना चालै ताहे कहां लपटानो उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवा पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाउ जोगी जंगम अर सन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह देह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए।

संग तेरा हर बसत नीत निस बासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण तां के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया

गाछुह पुत्री राज कुवार नाम भणुहु सच दूत सवार प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिख त्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन भूलो भरम से आए जाए अत लुभ लुभानो बिखम माए नह अस्थर दिसै एक पाए ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन भूलो समझस साच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ मन भूलो परमस पवर तार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार मैगल ज्यो फासस काम हार कर बंधन बांधे।

कदे नाही गुर शब्द सुनाए मत अगाए तू मोटो ठाकर शब्द माहे मन नानक मानिया सच सलाहे बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर हुए एकत राचे पर हर दुए दूर दर्द मत अमृत खाए गुरमुख बूझे एक समाए तेरे दर्शन को केती बिल लाए बिरला को चीनस गुर शब्द मलाए रहाओ बेद बखान कह एक कहिए ओहो बेअंत अंत किन लहिए एको करता जिन जग किया बाज कला धर गगन धरिया एको ज्ञान

गया तीता, हरख सोग ते रह नरासा, अमृत चाख हर नाम निवासा, आप पछान रह लिवलागा, जन्म जीत गुरमत दुख भागा, गुर दी या सच अमृत।

बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अंदुली कार मन मुख पर मैं मज गुबार मन अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना भागे रहाउ मन मुख अंदुले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख चौरासी जनते पाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस

आपे बशरू गऊ खीर, आपे मंदर थम शरीर, आपे करनी करनहार, आपे गुरमुख कर विचार, तू कर देख करनहार, जोत जी असंख दे आधार, तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करन जोग, नेह केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म वाद, बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार कर, महलत चार बहाली, चारे दीवे चहो हथ दिए, एकाएका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधो, ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ, कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिखदारी।

हर पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवतिया कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सब ना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करहंगी कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वस्या हिन पल फिर न रहाई अनक अपाव जतन कर थाके बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल पए है ज्यो कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किश आगे दालद पंज समा

रंग खीली एक रत्ती तिलना कटाई जानकी उस्त है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सके तेल अपने।

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गनका उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाई रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय।

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवा अनक जन्म भ्रमे जो न माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करम तव नह संगाई बिख का माता आवै जाई हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार राम क्रोध मन वस किया सुपने नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार मन उधरन का।

अपार कर कृपा लड़ ले हो लाए नानक दास प्रभ की सरनाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई वन त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिसते उपजिया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रहे कह माहि समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याइन सुन नित से भगत सहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया।

रहाउ। जागै सुख देओ अर अकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम। जोए खसम है जाया, पूत बाप खेलाया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मकलाई अपनी माओ, रहाओ पगा बिन हुरिया मारता। बदले बिन खिर खिर हासता, निंद्रा बिन नर पैसो है। बिन बासन खीर बलोवै, बिन अस्थन गहू लवेरी। पैंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट

मोह को कहां पढ़ाव से आल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बलाए बेग ताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सताव हो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड खड़ग को प्यो रिसाए, तुझ राखनहारो मोहे बताए। प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार, हरनाक्ष छेदे हो नख बेदार। उए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लख ना पार, प्रहलाद उधारे अनक बार। इस तन मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रत्न

बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा, कहत वीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा। रामानंद जी।

तेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए।

है कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। लोग

अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझ सुजनता कछु नाही, पहरावा देखे ऊब जाए। गर्भवती

हों चेरी, चरण गहे जगजीवन प्रभ के, हों मैं मार नबेरी रहाओ। पूरन परम ज्योत परमेश्वर, प्रीतम प्राण हमारे, मोहन मोहे लिया मन मेरा, समझस शब्द बिचारे। मन मुखहीन होछी मत झूठी, मन तन पीर शरीरे, जबकि राम रंगी लहराती, राम जपत मन तीरे। हौ मैं छोड़ पई बैरागन, तब साची सुरत समानी, अकुल निरंजन स्यो मन मानिया, बिसरी लाज लुकानी। पूर भविख नाही तुम जैसे, मेरे प्रीतम प्राण आधारा।

सखारी अंतर हर नाम सर्व धरनी तर साकत को दूर भया अहंकारी तृष्णा जलत न कबू बूझ जुह बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावह गुर किंचित कृपा तहारी नानक जिनको नदर

मुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुर आगै तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुर आगै गुर कह शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख दुवारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगै जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै भाई लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवै ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाई। रहाउ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाय। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाई। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाद लगाई। हिरदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाई। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाई। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाई। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए। सार महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा ही रह सतगुर प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख मिलिया सुख।

बिन सत संग सुख किनै ना पाया, जाए पूछो बेद बीचार, राणा राव सबै को चलै, झूठ छोड़ जाए पासार। नानक संत सदा थिर निश्चल, जिन राम नाम आधार। सारंग महला चौथा कर तीजा धुपदा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यो झगरत पाप रहाओ। जिस धन का तुम गर्व करत हो, सो धन किसै ना आप। खिन मह छोड़ जाए बिथिया रस, तौ लागै पछताप। जो तुमरे प्रभ होते स्वामी, हर तिनके जापो जाप। अपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो तौ जाए संताप। सारंग महला चौथा कर पंजवा, दो पदे पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जप मन जगन्नाथ जगदीशरो। जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी, मैं हर हर हर टेक सब दिन सब रात रहाओ। हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत, सुख नारद ब्रह्मादक तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर स्वामी, तू आपे ही जान है अपनी भांत। हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते, ते हर के जन साधु हर पगात। ते हर के जन

जप मान नरहरे नरहर स्वामी हर सगल देव देवा श्री राम राम नामा हर प्रीतम मोरा रहाउ जित ग्रह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द वड भाग मथुरा तिन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर अरादु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवाधु नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीश्वरा।

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे, तिस जन के हो मल मल धुआ पाऊ। हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अन दिनों त्याए, निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को कोट कोट तेतीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले,

मित नहीं पाईऐ सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्स मन चाओ। सारंग महला पंजवा हर जियो अंतर जामी जान करत बुराई मनुख ते छपाई साखी भूत पवान रहाओ। वैसनो नाम करत खट करमा अंतर लोभ जुठान संत सभा की निंदा करते।

करहे सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की

सतगुर बचन लहू रहाउ। क्वार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओह भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मह डारियो, अंबै अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

काजर मह परिया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठांडो खाए खाए मुश्कार गिरियो जाए रसातल परियो सिति सिति सिर पारे निर्वैर संग वैर रचाए पहुँच ना सके ग्वारे कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हिरदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत चरम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परापत जा कह लेख मथामा सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाचत फल लहिए रहाउ आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घट वासी गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वड भागे कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्व मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाकै संग पार ब्रह्म त्याई है अपदेश हमारी गत करन रहाउ दुख रोग पै सगल बनासी जो आवे हर संत सरन आप जपै अवरह नाम जपावे वड समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा ऊणे कहो सुभर भरन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रसह अगाने सहज समानी मुख ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो भले संयोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिजायो रहाओ संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साध है मंत्र मोर लो मनुआ ता

वेदनाई दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन न रह बहु विद उमकाई रहाउ चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो एह मन नहीं धीरे को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमख प्रिय दर्शद खावे इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाउ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुन पाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो

जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही। कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही। सारंग महला पंजवां क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिसरत होत मित का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ। जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई।

यह अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की था हरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सारंग महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याई रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक सबिन नाही को दूजा आरना बियो लवे लाए मात पिता पाई नानक को सुख दाता हर प्राण साई सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे रहाव मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंध कूप मह ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांचै नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलक सुख साध समागम।

पतित के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ता का जन्म मरण दुख नासा। कहो नानक पाई वड भागी, मन तन हुए बिगासा।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तौ नानक हर संग मिरिया सारंग महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव।

तुम ही सुग्र सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हे शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पामु दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाऊ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोग नसंगा निरपौ भय नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ शूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जेह घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मन।

तेते दुख सहामा गोविंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रय बोला गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक मोहे कलत्तर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं बोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहंग रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समर्थो हं सारंग महला पंजवा नैन हूं देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम का

सवार बना है भक्त वशल गुण तासा अंध कूप मह दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूरन होई आसा सारंग महला पंजवा चरण है गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता किस ताई है ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पये दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बस्यो मस्त पनीत संत तुरावा सर्ब निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कहो गुर पूरा भेट्यो सुख सहजे अनद बिहावा सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तुही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सार महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया भयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सद संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर में पाया।

सिद्ध कार्य सब सवरे अहं रोग सगल ही खया कोट पराध खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले थिर नानक राजया सार महला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण गाई रहाओ खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा अनदाई प्रतपाल बारक की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमक नहीं रह सकिए बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाइए आसना अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ त्याइए रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरणी पाइए किसह त्याग मनुख जे सेव हो तो लाज लोन होए जाइए एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाइए गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताइए सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट न लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ तेरे रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने काड लिया बिख केरे।

सहजासी ज्यों जान हो त्यों राखो ठाकुर सब किस तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अपनासी कहो नानक मन आनंद भया है काटी जम की फासी।

तब जीवन पाई है बिनती नानक एह सारे सारंग महला पंजवा मन ते पै पौ दूर परायो लाल ब्याल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाव गुर बचनात कमात कृपाते बहुर न कतहु तायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वच्छल ग्रह पायो नाद बनोद कोड आनंदा सहजे सहज सुमायो करना आप करावने आपे कहो नानक आप आपायो सार महला पंजवा अमृत नाम मन है आधारो जिन दिया तिस कह कुर्बान गुरपुरे नमस्कारो रहाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए ना जाए बसै एह ठाहर जह आसन रंकारो एक प्रगट एक गुप्ता एक तुंदू कारु आदमा बेअंत प्रभ सोई कहो नानक साच बीचारु सार महला पंजवा बिन प्रभ रहन ना जाए करी सर्ब सुख ताहू कै पूरन जां कै सुख है हरि रहाओ मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत आनंद कना वड समरथ सदा सद संगे गुण रसना कमन पना थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारी कहो नानक ते पवन पवित्रा जा मह संत तुम्हारी सार महला पंजवा रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतपालक मृत मंडल एक तू ही।

आस हमारी सारंग महल्ला पंजवां झूठो माया को मदमान त्रोहो मोह दूर कर बपरे संग गोपाल लह जान रहाव मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संत है की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारी महला पंजवा अपनी इतनी कशु न सारी अनक काज अनकता वरता उर्ज्यो आन जंजारी रहाओ देव सचार के दी सह संगी ऊहा नाही जह पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चार।

समाये, आनंद आनंद गुण गाया। बाहां पकर कड लीने अपने, ग्रह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिचरत आन मलाया। सारं महला पंजवां, हर के नाम की गत ठांडी। वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी रहाउ। सेव ब्रंच अर इंदर लोक, तामह जल तौ फिरिया। सिमर सिमर स्वामी पय सीतल, दुख दर्द भ्रम हिरिया। जो जो तरयो परातन लवतन, भगत पाए हर देवा। नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिले संत जन सेवा। सारंग महला पंजवां, जिहवे अमृत गुण हर गाओ। हर हर बोल कथा सुन हर की, उच्चरहो प्रभ को नाओ रहाओ। राम नाम रतन तन संचो, मन तन लाभ हो पाओ। आन बेभूत मिथ्या कर मानो, साचा एह सो आओ। जी प्राण मुक्त को दाता, एक सस्यो लिव लाओ। कहो नानक ता की सरनाई, देत सगल अपे आओ। सारंग महला पंजवा, होती नहीं कमन कछ करनी। यह ओट पाई मिल संत है, गोपाल एक की सरनी रहाउ। पंच दोख छिदर या तन मह, बिखे ब्याद की करनी। आस अपार दिनस गण राखी, ग्रस्त जात बल जरनी। अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर, सर्व दुख पै हरनी। मन बाछत चितवत नानक दास, देख जीवा प्रभ चरनी। सारंग महला पंजवा, फीके हर के नाम बिन साध। अमृत रस कीर्तन हर गाइए, अहनस पूर्ण नाद रहाउ। सिमरत शांत महा सुख पाइए, मिट जाहे सग

रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अराध हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरी,

सर्व प्रतपालक सर्व कटा आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आप है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा, सारंग महला पंजवा आवे राम सरन बड़ भागी। एक सबिन किश होर न जाने अवर अपाव त्यागी रहाउ, मन बच क्रम अराधे हर हर साध संग सुख पाया। अणद बनोद कथ कथा रस साचे सहज समाया, कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा जाते साधु सरण गही, शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ न रही रहाओ हो कृपाल नाम देहो अपना। बिनती एह कही आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत, पायो लाभ सही जहते उपजेओ तही समानो। साई बस्त आही कहो नानक परम गुरु खोयो, ज्योति ज्योत समही सारन महला पंजवा। रसना राम को जस गाओ आन स्वाद विसार सगले, भलो नाम सुआउ रहाओ। चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिवलाओ, साध संगत होहे निर्मल बहुड़ जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा तून थावे थाऊ, सास सास संभाल हर हर नानक सद बल जाऊ। सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याऊ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाऊ रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी माया करो भगवान, आवत जात दो पख पूरन पाइये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत बिचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी। सारंग महला पंजवा साचे सत गुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नास्त है चरण कमल बलिहारा रहाओ। सत परमेश्वर सत साध जन निचल हर का नाऊ, भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाईए सगल घटा आधार, नानक वाहो वाहो कहो तां को जा का अंत ना पार। सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरा, पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ। बंधन तोर राम निवलाई संत संग बन आई, जन्म पदार्थ भयो पनीता इच्छा सगल पुजाई। जाको कृपा करहु प्रभ मेरे सो हर का जस गावे, आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा जीवन तो गनिए हर पेखा, करहु कृपा प्रीतम मन मोहन फोर परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किश शांत ना उपजत, बिन बसास क्या सेखा। प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कै मुख लागे का लेखा। जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत भेखा, नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ बेसेखा। सारंग महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम, कलमल दगद होहे खिन अंतर कोट दान इशनान रहाओ। आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर फोकट ज्ञान, जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान। तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान, सिमर सिमर नानक प्रभ जीवे बिन सजाए अभमान। सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागे,
सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाउ। बलबंच करे ना जाने लाभ है सो धूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रच्यो नह सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवां हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाउ। संचन राम नाम धन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पय मन लाला राम नाम रस खीवन। ज्यों मीना जल स्यों उरजानो राम नाम संग लीवन। नानक संत चातरक की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन। सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाउ। बिन प्रभ सेव करते अन सेवा बिरथा काटे काल जब जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल। राख ले हो दास अपने को सदा सदा किरपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल। सारंग महला पंजवां मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीते बोहत नह संसार रहाउ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार। नाम निदान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजवां हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर मिलत अंध दुख घोरी रहाउ। हर के नाम स्यों प्रीत न लागी अनक भेख बहु जोरी टूटत बार न लागे तां को ज्यो गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी। नानक दास तेरी सरनाई प्रभ बिनयान न होरी। सारंग महला पंजवा चितवो वा अवसर मन माहे हुए अकत्तर मिलहो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रहाउ। बिन हर भजन जेते काम करियह तेते बिरथे जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछु लाहे चरण कमल नानक मन बेदेहो चरण है संग समाहे। सारंग महला पंजवां मेरा प्रभु संगे अंतर जामी आग्या कुशल पाशै खेम सूखा सिमरत नाम स्वामी रहाउ। साजन मीत सखा हर मेरे गुण गोपाल हर राया बिसरना जाई निमख हृदय ते पूरे गुरु मलाया। कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाके एका लिव पूर्ण परमेश्वर पौ नहीं नानक ताके। सारंग महला पंजवां जाके राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्णता हुके दुख ना व्यापै कोई रहाउ। जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उद्म करो दर्शन पेखन को कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करहो कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाउ। मन तन धन सब तो

साध संगत कै बल बल जाई बहुड़ न जन्मा ताए नानक दास तेरी सरनाई ज्यो भावै तिवै चलाए सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दिसह शार रहाओ ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार पतत पावन भगत बच्छल दीन किरपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नास्ती।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल तै काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाव पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है की रवार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाती तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याय परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद तुल बाणी बहुर न पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादि सिर उठाई पोट उगर गइया खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गईया हाट किन बिख करत करत पछतावह कबू ना साकह शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देवह मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जन का राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत प्रतिहार रहाओ सांत सूख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार आप पर का कश

के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार। नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार। सारु महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान। साध संग गावे गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान। जिसै कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्णता को काम। जा कै हृदय वसै पै पंजन तिस जानै सगल जहान। खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगै दान। सारी महला पंजवा बूठा सर्ब थाई मेह। आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ। चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के। कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव। सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव। सत ते जन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव। सारी महला पंजवा।

वार रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चल नीम तराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारंग महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ, बहुड़ जोन ना पाए। पये कृपाल दयाल गोविंद, भया साधु संग, हर चरण रास ना

तू बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जान जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिती असार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बिकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुरु बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभु संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग कर।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिय हर संग संग खचिय जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारंग महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सरवन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संध सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए

हर हरे हर मुख बोल, हर हरे मन तारे रहाओ। श्रवन सुनन भगत करन, अनक पातक पुनः चरन।

कलमल दुख जारी कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत बिचारे सारंग महला पंजवां।

जो साध संग पग रौ रहाउ, दृष्टौ कस संग न जाय, मान त्याग मोहा, एकै हर प्रीत लाए, मिल साध संग सोहा, पायो है गुण निदान, सगले आस पूरी, नानक मन आनंद पए, गुर बिकम गारह तोरी, सारंग महला पंजवां, मन बेरा गैगी, खोजती दरसार रहाउ, साधु संतन सेवकै, प्रियो ही अरै त्यायो, आनंद रूपी पेख कै, हों महल पावों।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग पाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवां हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना चालै कहां ताहे लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तां स्यों रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारंग महला नौवां कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग मह को रहन ना पावे।

सगल बला सह ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरण संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहा नर अपनो जन्म गुआवे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाव। एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवा मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन क्यों जीवा मेरी माई जय जगदीश तेरा जस जाच्यों मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो हर सियो रहा समाई ऐसी रबत रवो मन मेरे हर चरणी चित लाई विषम भये गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई हृदय नाम सदा तुन निश्चल घटै न कीमत पाई बिन नावै सब कोई निरतन सत गुरु बूझ बुझाई प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल भई मन पहाई सहज समाध सदा निवहर सियों जीवा हर गुण गाई गुर कै शब्द रत्ता बैरागी

ऐसी गुरमत पाई। सनक सनाद ब्रह्माद इंद्राद भगत रते बन आई। नानक हर बिन करी न जीवा, हर का नाम बढ़ाई। सारंग महला पहला, हर बिन क्यों तीरै मन मेरा। कोट कल्प के दुख बनासन, साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ। क्रोध नवार जले हो ममता, प्रेम सदा नौरंगी। अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया, हर निर्माल संगी। चंचल मत त्याग भव भंजन पाया, एक शब्द लिव लागी। हर रस चाख त्रिखा निवारी, हर मेल लय बड भागी। अपरत सिंच पये सुपर सर, गुरमत साच निहाला। मन रत नाम रते नेह केवल, आद जुगाद दयाला। मोहन मोहे लिया मन मोरा, बड़े भाग लिव लागी। साच विचार किल विख दुख काटे, मन निर्मल अनरागी। गहर गंभीर सागर रतनागर, अवर नहीं अन पूजा। शब्द विचार परम पहु पंजन, अवर न जानिया दूजा। मनुआ मार निर्मल पद चीनिया, हर रस रते अदखाई। एक सबिन मैं अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया। सुपार भरे नाही चित डोले, मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी अकथो।

उन उपजय मन साचा लिव लाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई। एक समय सब जगतो वरतै विरला एक पछाण है शब्द मरे ता सब किस सूजै अन दिन एको जान। जिसनो नदर करे सोई जन बूजै होर कहना कथन ना जाई। नानक नाम रते सदा बैरागी एक शब्द लिवलाई। सारंग महला तीजा मन मेरे हर की अकथ कहानी हर नदर करे सोई जन पाए गुरमुख विर लै जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर कै शब्द पछानिया बहु विध कर्म करह पाए दूजे बिन शब्द बौरानिया। हर नाम नावै सोई जन निर्मल फिर मैला मूल ना होई नाम बिना सब जग है मैला दूजे परम पथ खोई। क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी मैं ता बूझ ना पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो नामो होए सखाई। सच्चा सच दाता कर्म विधाता जिस भावै तिस नाए लाए गुरु द्वारे सोई बूझै

मुख द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़े सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावे आवन जान रहाई से दर साचै साच कमावे जिन गुरमुख साच अधारा मन मुख दूजै परम भुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए हैं जिनकी पत पावे लिखै सारंग महला पंजवा अष्टपदियां घर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाओ राणा राओ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो।

काष्ठ संगे नीर तरन कर राखी एकत कोई ना किसी ही संगे काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझह उमाहा जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजक समाहा जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बड़ाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख भए किरपाला तिन भव सागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जाका विसठार सोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहु मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद धुन करह अनक महेश बैस ध्यान तरह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंद्र

पावक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक कामतेन अनक पार जात अनक मुखवेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेठ नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का काश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते पये निहाल सारंग संत महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अलपाता कट कट पूर्ण कर बिस्थिरन जल तरंग स्यों रचन किया अब रस माने भोग कटाने आन ना बिया कोथिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता नानक दर्स लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता कौन उपमा देओ कमल बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किस दिसे संग ना कछु हो जाई कहो नानक हर हर अराध हो कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा हियो अरापो देहो संदेसा प्रभ जीओ कैसा कह मोहन परवेसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चिरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सुरदा जेह चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुवाया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सहजाया

की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े अवर न कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जो ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीर्थ पवे नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते होए तूड़ लेखा लिखिया मन कै पाए नानक पी जय साचै नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरे पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाब वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया।

आए तले आवह नानका सदे उठी जाहे। महला दूजा सिफत जिना को बख्शी है से पोतेदार कुंजी जिन को दितिया तिना मिले भंडार। जह भंडारी हूं गुण निकल है ते की यह परवान नदर तिना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी। नाम निरंजन निर्मला सुनिए सुख होई सुन सुन मन वसाई है बूझे जन कोई। बहदिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई भगतां को नाम आधार है नामे सुख होई। नानक मन पन रव रहिया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला नानक तुलिया है।

आख, एक आख आख है, शब्द पाख है, अर्द उर्द दिन रात, जे कहो होए ता केहो दिसै, जापै रूप न जात, सब कारण करता करे, काटे ओ काट काट थाप, आखने औखा नानका, आख न जापै आख पौड़ी, नाए सुने मन रहसी है, ना मेशा ते आई, नाए सुने मन तृप्ति है, सब दुख गवाई, नाए सुने ना उपजै, नामे वडे आई, नामे ही सब जात पत, नामे गत पाई, गुरमुख नाम त्याई है, नानक लिवलाई। सलोक महला पहला, झूठ न रागी, झूठ न वेदी, झूठ न चंद सूरज की भेदी, झूठ न अन्नी, झूठ न नाई, झूठ न मिंबर है सब थाई।

मूख की गिरही का सत दान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच त्यान पानी चेतना धूपै मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पन्ना खुलियां सुख ना निकलियो कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रत्या मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अगे लेखे मंगिए होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुन्नू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

सबे करने तप सब सबे गीत ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब।

हुक्म चलाए आपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाई सच सभा दीबान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन देवे सोई श्लोक महला पहला पुरियां खंडा सिर करे एक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिके किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

सब कारण करता करी देखै वारु वार जे चुपै जे मंगिए दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखै आकार नानक ए मैं जानिए जीवै देवनहार पौड़ी नाए मन्ने सुरत उपजे नामे मत होई नाए मन्ने गुण उच्चर नामे सुख सोई नाए मन्ने भ्रम कटी है फिर दुख न होई नाए मन्ने सालाही है पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाओ मन्निए जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता ऊ कारणता अजानता जा बूझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाई सच पवै धुर लेखै पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखिया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाईऐ पाई नाम निरंजन वरतदा रविया सब ठाई गुर पूरे ते पाईऐ हिरदै दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिऐ पहाई सलोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज होआ मुरदार कूड़ बोल बोल भौंकना चूका धर्म बीचार जिन जी वंदिया पत नहीं मोया मंदी सोए लिखिया होए नानका करता करे सो होए महला पहला रन्ना हुईया बोधिया पुरस होए सयाद सील संयम सोच पन्नी खाना खाज आहाज शर्म गया घर अपने पाते उठ चली नाल नानक सच्चा एक है और ना सच्चा पाल पौड़ी बाहर भस्म लेपन करे अंतर गोबारी खिंता झोड़ी बहु भेख करे दुर्मत अहंकारी साहिब शब्द ना ऊचरे माया मोह पसारी अंतर लालच भरम है भरमै गावारी नानक नाम ना चेतई जुए बाजी हारी सलोक महला पहला लख सिउ प्रीत होवे लख जीवन क्या खुशियां क्या चाऊ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक घड़ी मह जाए जे सो वरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मिठा खादा चित न आवे कौड़तन ताए जाए मिठा कौड़ा धोए रोग नानक अंतव गुत्ते भोग चक चक चखना झगड़ा चाख चक चक जाहे चखै तिन पास महला पहला कापड़ काठ रंगाया रंग तर गच कीते बागे बाग साध सहज कर मन खेलाया तै सह पासो कहन कहाया मिठा करके कौड़ा खाया तिन कौड़ै तन रोग जमाया जे फिर मिठा पेड़ै पाए तौ कौड़तन चूकस माए नानक गुरमुख पावे सोए जिसनो प्राप्त लिखिया हुए पौड़ी जिनकै हिरदै मैल कपट है बाहर तो आया कूड़ कपट कमावन दे कूड़ प्रगती आया अंदर हुए सो निकलै नह छपै छपाया कूड़ै लालच लगिया फिर जूनी पाया नानक जो बीजै सो खावना करतै लिख पाया सलोक महला दूजा कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन बीचार दे दे लैना लै लै देना नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जिनसी परम पवै संसार अमृत बाणी तत्व खानी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर वेखै नानक अगो हुमै तुटै तां को लिखिया लिखै महला पहला वेद पुकारे पुन पाप सुर्ग नरक का बीयो
जो बीजै सो उगवै खांदा जाणै जीओ ज्ञान सलाहे वड्डा कर सचो सच्चा नाऊ सच बीजै सच उगवै दरगाह पाईऐ थाऊ वेद वपारी ज्ञान रास करमी पल्लै होए नानक रासी बाहरा लद ना चलिया कोई पौड़ी निम बिरख बहु संची है अमृत रस पाया बिसियर मंत्र वसाई है बहु दूध पी आया मनमुख अभिन ना भिजई पत्थर नवाया बिख मह अमृत सिंची है बिख का फल पाया नानक संगत मेल हर सब बिख लह जाया।

मोहला पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ है ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया जो हर नाम त्याएंदे तिन तोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम समाया सलोक महला चौथा सतगुर सेवन से बड भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कतंब मह सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी महला चौथा गणत सेव ना होवे कीता थाए ना पाए शब्द साध ना आयो सच ना लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन हठ आवे जाए जे एक विख अगाह भरे ता दस विखा पछाह जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चल है सतगुर पहाए आप गुआए सतगुरु।

पाई, घर मंदिर गच गीरियां किस साथ ना जाई, सोएन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मनमुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन, दुख लागा अत पारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव, माया कै व्यवहारी, अंदर कपट उधर भरन कै ताई, पाठ पढ़ गवारी। सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन हऊ मैं विचों मारी, नानक पढ़ना गुणना इक नाओ है, बूझे को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धरमाई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई, दुख खाना दुख भोगना गर्भै गर्भाई, नानक नाम ना चेत्यो अंतले छुड़ाई। सलोक महला तीजा, सहजे सुख सुत्ती शब्द समाए, आपे प्रब मेल लई गल लाए, दुबदा चूपी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसर झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई, हिरदय हर हर चितवै दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरै खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाउ, नानक नाम मिहूनिया तिन तन खावह काउ। पौड़ी नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, उए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, उए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हऊ मैं बहुत अहंकार, शब्द साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै पावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदी न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे ना चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिकमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मै वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करह सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहि विसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिले दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दर वज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटिया नानक पावह पार। महला तीजा, सच पराणा ना थी नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चले बहुड़ ना आवन होए, नानक नाम वसारिया
आवन जाना दोए पौड़ी, मंगत जन जाचै दान हर देहु सुपाए। हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए, खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए। सतगुर नाल दिखा लिया रल रहिया सब थाए, सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा, मन मुख बोल ना जाननी, उना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वर्त आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन कहो जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजै पाए नाम वसारिया मन मूरख मिलै सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो न कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याएंदे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेवंदे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चलै सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग वजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ऊना परख न आवई अड ना पल्ले पाए। जे आप परख न आवई ता पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए ता वत लहै नौ नित पल्ले पाए। धर हुंडै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम। सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू। जे आप मेले करतारे अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मन मुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी। स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेख है विकसै मोह माया। देश परदेश धन चराए आण मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पढ़ थके पेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किश चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का पहु हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै, दरगाह मूख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै न बिंद। किस स्यों क्यों मन रूसी है, जिसे हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम त्याय। दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी, मीह उठा शहबर लाए। सब तरत पई हरियावली, अन जमया बोहल लाए। हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे थाए। हर तसै त्यावो संत जन हो, जो अंते लय छदाए। हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम अरादया, तिन्ना दुख भुख लह जाए। जन नानक तृपतै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी गुर पूरे की दात, नित देवै चढ़ै सवाइया। तुस देवै आप दयाल, ना छपै छपाइया। हिरदै कवल परगास, उन मन लिव लाइया। जे को करे उस दी रीस, सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहु है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए। आप छोड़ सरनाए पवे, मन लय रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई, हउ मैं विचों जाए। नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियान पहु मैं मेरी। बहु कर्म कमावे है, लोभ मोहे व्यापे, हउ मैं कदे ना चूके फेरी। नानक आप कराए करता, जो तिस पावे साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवा, सच खाना सच पहनना, सच नाम आधार। गुर पूरै मेलाया, प्रभ देवन हार। भाग पूरा तिन जागया, जपया निरंकार। साधु संगत लग्या, तरिया संसार। नानक सिफत सलाह कर,

चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारत जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए।

मन बिखिया बन जाए, भूलोरे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह, जेहबा स्वादी लीलत लोह।

गऊ बास कौ संचय खीर गला बांध दोहे ले आहीर माया कारण श्रम अत करै सो माया ले गाडे तरै अत संचय समझै नहीं मूड धन धरती तन होए गयो धूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरै

हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस साधे अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख भय निर्भिखे पाए है सगले थोक आन बस्त स्यो काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत।

दे, हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब पन का रहाउ, आगे कौ किस तुलहा बंद हो, क्या परवासा धन का, कहां बसासा इस भांडे का, इतनक लागै ठन का, सगल धर्म पुन फल पाव हो, तूर बांच हो सब जन का, कह कबीर।

उर तारा मलार महला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बरस घना मेरा पिर कर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख वगासी तो धन साच शिंगारू अकुल निरंजन स्यों सच साची गुरमत नाम अधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पा।

पार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रत्न आचार रहाव दुख सुख दो सम कर जाने बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईए सत संगत गुर प्यार एहन सलाहा हर नाम प्रापत गुरदाता देवन हार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनु नदर करे करतार काया महल मंदर घर हर का तिस मह राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बलाईए हर मेले मेलन हार मलार महला पहला घर दूजा।

ठहरै सोय। मलार महला पहला दुख वे छोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सकतवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताई, वैद न भोले दारू लाए, वैद न भोले दारू लाए।

ब्रह्मा बिचन में हिस्सा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूकै मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख आ

जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हों मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करह दिन राती सच रहे निवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाउ त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हौ मैं कर्म कमाए साहिब भावे सो थीऐ पए किरत फराए सतगुर भेटै मन मर रह हर नाम वसै मन आए तिसकी कीमत ना पवै कहना किशु ना जाए चौथे पद वासा होया सच्चे रह समाए मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है कीमत कहन ना जाए गुर प्रसादी बुझी शब्दे कार कमाए नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला दूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिलै शांति उपजै अनदिन नाम लै मेरे मन हर अमृत नाम ते आए सतगुरु।

आनंदे त्रिपतास्ते सत्य नाम समवाही आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाद लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारिंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवै गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच भतीजै

अंतर वस्या अलख अपेवा गुरमुख होए न खाई। नानक जिस भावै तिसे आपे देवै भावै तिवै चलाई। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागै सद हर स्यों ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी

अविनाशि के इहो मन अवर्ण सदा अविनाशि के इहो मन चंचल के इहो मन बैरागी इस मन को ममता कित्थों लागी पंडित इस मन का करहु विचार अवर के बहुता पढ़ है उठावे पार रहाव माया ममता कर पैलाई एहो हुक्म कार श्रेष्ठ उपाय गुर प्रसादी बूझो पाई सदा रहो हर की शरणाई सो पंडित जो त्यहां गुणा की पांड उतारे अनदिन एको नाम बखाने सतगुरु की ओहो दीखिया ले सतगुरु आगे शीश तरे सदा अलग रहे निर्भ

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए फन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुखदा खोया कौडी बदलै जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउ मैं ममता बहु मोह बधाया दूजै पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिए सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे।

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाई सत संगत की धूर परी उड नेतनी सब दुरमत मैल गवाई रहाउ जाहर नवी तपै भगीरथ आनी केदार थाप्यो महसाई कांसी कृष्ण चरावत गाऊ मिला।

बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तो मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्त।

जाई, सार संभाल माता मुख नीरै, तब ओह तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभ दाता, भूलह बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जह जाता रहाऊ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेलै, मात पिता कंठ लाए राखै, आनंद सहज तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नव निध नाम निदान ग्रह तेरै, मन बांचै सो लैसी। पिता कृपाल आग्या एह कीनी, बारक मुख मांगै सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहै, मोहे हिरदै बसहै नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जुर आहर करया, तजियो सगल अंदेसा, कार्ज सगल आरंभियो।

के ग्रह मंगल सोहलावी रहाउ मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहन मिलियो भगत करो निव पाए जब

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निद छोड़ आन को पूजह, आत्म घाटी हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्मह बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना डार हो प्रभ करते।

जो प्रिय संग राती एहं मैं की तिथाई पई निमाणी शरण एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मनह सधारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ हम तेरी धर स्वामिया मेरे तू क्यों मनहु बसारे।

तेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु ताया मन तन नाम निरंजन रातहु चरण कमल लेव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास

अंतरजामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथा नाथ दीन दुख भंजन

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है गुर उपदेश हर हृदय वस्यू सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाऊ गुर के चरण विटोह बल जाऊ गुर के गुण अन दिन नित गाऊ गुर की धूड़ करू इशनान साची दरगाह पाई मान गुर बोहित भवजल तारन हार गुर भेटे ना हुए जोन अवतार गुर की सेवा सो जन पाए जां को कर्म लिखिया तुर आई गुर मेरी जीवन गुर आधार गुर मेरी वर्तन गुर परवार गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई कर कृपा प्रब आप मलाई अपने सेवक को लय प्रभ लाई ताकि कीमत कही ना जाई कर कृपा पूर्ण सुख दाते।

राखे सब जंत गुण गावहु नित नित भगवंत एको करता आपे आप हर के भगत जानह प्रताप नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बुलाया मलार महला पंजवा गुर सरनाई सगल निदान साची दरगाह पाईए मान प्रम पौ दुख दर्द सब जाए साध संग सद हर गुण गाए मन मेरे गुर पूरा सलाहि नाम निधान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाई रहाउ सतगुर जे वडे अवर ना कोई गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोई।

रहाउ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारी विषम विषम विषम भई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारी जन नानक सरन द्वारी मलार महला पंजवा बरस सरस आ गया होहे आनंद सगल भाग रहाउ संत संगी मन परफड़ै मिल मेघ धर सुहाग कन घोर प्रीत मोर चित चात्रक बूंद ओर ऐसो हर संगी मन मोह त्याग माया तो मिल संत नानक।

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम।

बिन जल प्यास न जाई, मीन नवास उपजे जल ही ते, सुख दुख पुरब कमाई, खिन तिल रह ना सकै पल जल बिन, मरन जीवन तिस ताई, तन वांडी पिर देस नवासी, सच्चे गुर पह शब्द पठाई, गुण संग्रह प्रभ हृदय नवासी, भगत रत्ती हर खाई, प्रियो प्रियो करे सबै है जेती, गुर भावै प्रियो पाई, प्रियो नाले सद ही सच संगे, नदरी मेल मलाई, सब मह जियो जियो है सोई, घट घट रहे आसमाई, गुर प्रसाद घर ही परगासिया, सहजे सहज समाई, अपना काज सुवारु आपे, सुख दाते गोसाई, गुर प्रसाद घर ही फिर पाया, तौ नानक तपत बुझाई, मलार मोहल्ला पहला, जागत जाग रह गुर सेवा, बिन हर मैं को नाही, अनक जतन कर रहन ना पावे, आच काच धर पाही, इस तन धन का कहो गर्भ कैसा, बिन सतबार न लागे बबरे, हऊ मैं गर्भ खपे जाग ऐसा, रहाउ जय जगदीश प्रभु रखवारी, राखे परखे सोई, जेती है तेती तुझ ही ते, तुम सारे अवर ना कोई, जी

मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई, रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा नाम सुपहाई। लोचन तार ललता बिललाती, दर्शन प्यास रजाई। प्रिया बिन शिंगार करी तेता तन तापै, कापर अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको, बिन मिले नींद ना पाई। फिर नजीक ना बूझै बकड़ी, सतगुरु दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिया सा चैतान, नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण।

शबद नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा कह मग ना चालन हार, जित कर वसे है तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै, सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया छापै, करन पलाव कर बिललातो, बिन गुर नाम ना जापै, पल पंकज मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सिंहापै, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै

हृदय साचा शब्द सुमाल, गुरमत साची शब्द है सार, हर का नाम रखे उर तार, से दुख आगे जे भोग बलासी, नानक मुक्त नहीं बिन नावे साची। मलार महला तीजा, अष्टपदियां घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर्म हुए ता सतगुर पाईए, बिन कर्म पाया ना जाई, सतगुर मिले कंचन होइए।

अचार करै विवेक बुद्ध पाई, पुरखै पुरख मलाई। धातुर बाजी संसार अचेत है, चलै मूल गवाई। लाहा हर सत संगत पाई, करमी पल्लै पाई। सतगुर विण किने ना पाया, मन वेखो हृदय विचार। वड भागी गुर पाया, पव जले उतरे पार। हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार। कृपा करहो गुर मेलो हर जियो, पावो मोख द्वार। मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर, मेटना ना जाय। नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर भाणा पाए। मलार महला तीजा, वेद बाणी जग वर्तदा। त्रै गुण करे विचार, बिन नावै जम डांड सह। मर जन्मै वारु वार, सतगुर भेटे मुख।

हर हर नाम त्याई रहाउ, हरे अपने भाणे सिष्ट उपाई, हरे आपे दे आधार, हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोई, वाह वाह कर प्रभ सलाही है तिस जे वड़े अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लई।

कमल परगास, तित काट नामै नाम निवास, हऊ मैं भगत करे सब कोई, ना मन पीजै ना सुख होए, कह कह कहण आप जनाई, बिरथी भगत सब जन्म गवाए, से भगत सतगुर मन पाए, अन दिन नाम रहे लिव लाए, सद ही नाम वेखह हजूर, गुर कै शब्द रहया भरपूर, आपे बख्शे दे प्यार, हम मैं रूप

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया तीए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुरबाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैद की पकड़।

तखे संतै चित करे हो। नानक चूर मरहै दोहागनी जिन अवरी लागा ने हो। महला दूजा सावण आया हे सखी जल हर बर सुनहार। नानक सुख समन सोहागनी जिन सह नाल प्यार पौड़ी। आपे सिंह पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़तू पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखै सिर लेख बिन कलम मसवाणिए। सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए। नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

वरसै लाए झड़ी नानक पाणै चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे इस मेघै हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जा को नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा।

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए महला तीजा। कलमल होई।

संबाहि जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आई पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाई दूजे दूजी तरफ है कूड़ मिले ना मिले आ जाई आपे जोड़ बछोड़े।

को जो हर चरनी रहे लिवलाई। ज्यों जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाई। से सुखिए सदा सोहणे जिन विचों आप गवाई। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक संवाई। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है। जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो। तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल ना होवई सब

आप छाए छुट्टी है आपे बख्शन हार आपे वेख सुने आप सब सह दे आधार सब मह एक वर्तदा सिर सिर करे विचार गुरमुख आप विचारी है।

नानक सदा सुहागणी गुर कै हेत अपार महला तीजा सावण दजै गुण बाहरी जिस दूजै पाए प्यार नानक पिर की सार ना जाने सब शिंगार खुआर पौड़ी सच्चा अलख अपे हठ ना पतीजय एक गावे है राग परियां राग ना पीजय एक नच नच पूरे है ताल भगत ना कीजय एक अन ना खाहे मूरख तिना क्या कीजय तृष्णा हुई बहुत किवै ना तीजय कर्म बदै कैलो खप मरी जय लाहा नाम संसार अमृत पीजय हर भगती असनेह गुरमुख की जय सलोक महला तीजा गुरमुख मलार।

मनखन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोए से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहार जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याई पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

शाज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाए नानक हुक्म ना जापई किथे जाए समाही फसल आहारी।

भूख सनावे, खसमै मूल ना पावे, अक स्यो प्रीत करे अक तिद्दा, अक डाली बह खाई, खसमै पावे ओहो चंगा, जे करे खुदाई खुदाई, नानक दुनिया चार दिहाड़ी।

आवे तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमती विचार इक नानो पुद एवं भावदा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाई है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेव दे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल कटै दिन काल सिज्जै काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछै रूवह लिया वह फेर बिन बूझे

जिस पाणा मन वसाई अपने पाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख भुख न जाई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई सतगुर सेवे सो सुख पाई जिसनो कृपा करे रजाई सलोक महला पहला शर्म धर्म दोए नानका जे तन पल्ले पाई सो तन मित्र ना कांडिया जित सिर चोटा खाई जिनकै पल्ले धन वसै तिनका नाउ फकीर जिनकै हिरदै तू वसै ते नर गुणी गहीर महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगै दुख नानक सच्चे नाम बिन किसै ना लथी भुख रूपी भुख ना उतरै जा देखा ता भुख जेते रस शरीर के तेते लगै दुख महला पहला अंधी कमी अंध मन मन अंधै ताने अंध चिक्कड़ लाया क्या थी है जा टुटै पत्थर बंद बंद टुटा बेड़ी नहीं ना तुलहा ना हाथ नानक सच्चे नाम विण केते डुबे साथ महला पहला लख मन सोयना लख मन रूपा लख साहा सिरसा लख लश्कर लख वाजे नेजे लखी घोड़ी पातशाह जिथे शायर नंगना अगन पानी असगाह।

किर्त का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाऊ नानक गुरमुख जानी है कल का इहो नियाऊ महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाऊ फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाऊ सो पढ़िया सो पंडित भी।

कोड़ बैस नक पकड़ है राती मानस खाने फड़ कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे सिओ क्या कही है कह ना कहया बूझे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मास ना खाही स्त्री पुरख है जान इस मेला उत है मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझै नाही चतर कहावे पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मास होए जीए लया वसेरा अपाख पक है पाख तज छोड़ है अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझै नाही चतर कहावे पांडे मास पराणी मास कतेबी चहो जुग मास कमाना जज काज व्याह सहावे उत है मास समाना स्त्री

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लै, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

हे गोपाल राय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या वैकुंठ भवन चित्रशाला सप्त लोक समान पूरी अली जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़ी कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावड़ा जिन विश्व संसार राची ले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखी ले

जाचै भस्मति सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कार कूर्मा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंतर।

कागरा करत विचार भगत भागवत लिखी तेहे उपरे पूजिए कर नमस्कार मेरी जात कुट बांडला ढोर ढो अंता नित है बनारसी आस पासा।

तास पत तास सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्तरयो आन रे आन भरपूर सो रहाओ जाके भागवत लिखी है अवर नहीं पेखी है तास की जात अशोक।

साध जना मिल हरिया हौ बल बल बल बल साध जना कौ मिल संगत पार उतरिया रहाउ हर हर कृपा करहु प्रभ अपनी हम साध जना पग परिया तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया मिल साधु पतत उधरिया मनुआ चले चले बहु बहु बिद मिल साधु वसगत करिया ज्यों जल तंत पसारियो बदक ग्रस मीना वसगत खरिया हर के संत संत पल नीके मिल संत जना मल लहिया हौ मैं दुरत गया सब नीकर ज्यों साबुन कापर करिया मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर गुर सत गुर चरण उर धरिया सब दालद दुख पांच प्रभ पाया जन नानक नाम उधरिया कानड़ा महला चौथा मेरा मन संत जना पगरेन हर हर कथा सुनी मिल संगत मन कूरा हर रंग पेन रहाउ हम अचेत अचेत न जान है गत मित गुर किए सुचित चितेन प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन हर के संत मिलह मन प्रीतम।

चौथा जप मन राम नाम प्रगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नर हर प्रभ कृपा करी कृपास अन दिन आनंद भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगने आरे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे घट घट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंद पहर साक।

परचै राम रविया घट अंतर, अस फिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जन नीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लह ना उतरे कबहू, हर हर जाय मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नाम

परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए देहाथ रहाव। स्वामी अपै निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ। तुम वड पुरख वड अगम अगोचर

तेहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ।

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास तित का

पग चाट जित मिल हर पादर बाट भज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर भेख न पाइया हर ब्रह्म जोग हर पाइया सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू भरपुर रहिया जल फले हर एक इको एक एक हर थाट तू जान है सब बिद बूझ आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो तुर हो लिखे लला दो रहाओ बिख माया संच बहु चित बेकार सुख पाइय हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधु ज्यों शोहे पारस मनूर भय कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधहादु ज्यों कासत संग लोहा बहु तरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति

कुल सगल तरादू कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाइए गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुखदाते सतगुर जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मनह साधार है कोट पराधी खिन महतार है जा को चीत आवे गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा।

अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने रहाउ ता कै हृदय बस्यो नाम जा को स्वामी कीनो दान ता कै हृदय आई शांत ठाकुर भेट।

असन अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाव अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मह मन प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब भय।

लभ देही, जां कौ सतगुर मया करेही। अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा, जां कै हृदय बसह गुर पैरा। साध संग रंग प्रभ त्याया, कहु नानक तिन पूरा पाया। खानड़ा महला पंजवा, भगत भगतन हूं बन आई। तन मन गलत भये ठाकुर सिउं,

तेरो जन हर जस सुनत उमायो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पुनीता हर हर मंत्र गरड़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहू तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

कानड़ा मोहल्ला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै तरना तुमरो बाल तुम संग सुहेले।

नाम मंत्र सतगुरु दरडाया रहाउ। नह त्रिपतानो राज जोबन धन, बहुर बहुर फिर ताया। सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, शांत पाई गुण गाया।

जसमाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाय शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरन कोट जन्म दुख जा

दुख जाए रहाउ, ईत ऊत कहाँ लुभाव है, एक स्यो मन लाए, महापवित्र संत आसन, मिल संग गोबिंद त्याय, सगल त्याग सरन आयो, नानक लेहो मलाए, कानड़ा महला पंजवा, पेख पेख बिगसाओ साजन, प्रभ अपना एकांत रहाउ, आन दा सुख सहज मूरत, तिसे आन नाही भांत, सिमरत एक बार हर हर, मिट कोट कसमल जात, गुण रमंत दुख नास है, रिद पयंत शांत, अमृता रस पियो रसना, नानक

तो परम राख लीजै काट बेरी रहाउ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन्य ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगै मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवां, कि एको प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भय तिह संगे।

गहे रहे अटकाए, अनक भांत की एकै जाली, ताकी गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो।

बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय धार उतरिया दुख मंद राज धन परिवार मेरा सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहु विद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहा पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोई ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौ बल बल सद बल जास कानड़ा महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदाहरण नाम प्रिय तेरा नव निध नाम निधान हर केरा हर रंग रंग रंग अनुपेरा काहे रे मन मोहे मगनेरा नैन देख साध दर्शेरा।

अंतर करेर अठ सठ मज्जन मैल कटेर सास सास त्याहु मुख नहीं मोर किस संग ना चाले लाख करोर प्रभ जी को नाम

लेरै, दर्शन प्यास बहुत मन मेरै, मिल नानक देव जगत गुर केरै, कानला महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाउ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही यो तरसना।

कीत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजाचार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनो

करो ये तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीत करह तुहारी।

आय पतत पावन बिरद स्वामी उदर ते हर त्याय रहाओ। संसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध विकल माया संग तंध कर गहे प्रभ आप काढ़ु रख ले हो गोविंद राय। अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप बनास मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय। कानड़ा महला पंजवा वार वारों अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ। कनक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाही इनस्यो तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सूख बेहात। कानड़ा महला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो।

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मगन अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवां कर दसवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार, रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई, मिलियो नाम आधार, दलभ जन्म सफल नानक, पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुपाए अपने आए, कछु न जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मिलाए साध संगाए, कतहु न जाए करह बसाए, गुण निधान प्रगट्यो एह चोले, चरण लुभाए आनत जाए, थान थनाए सर्ब समाए, रसक रसक नानक गुण बोले, कानड़ा महला पंजवां, गोविंद ठाकुर मिलन दुराई, परमत रूप अगम अगोचर, रहियो सर्ब समाई रहाउ, कहन भवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक उपावरे, तौ मिलियो जो कृपाई, प्रभु दयार कृपार कृपा निद, जन नानक संत रे नाई, कानड़ा महला पंजवां, माई सिमरत राम राम राम, प्रभ बिना नाही होर, चितवो चरनार बिंद, सासन निसपोर रहाओ, लाए प्रीत कीन आपन, टूटत नहीं जोर, प्राण मन तन सर्ब सो, हर गुण निजे सुख मोर, ईत ऊत राम पूरन, निरखत रिद खोर, संत सरन तरन नानक, बिन से ओ दुख कोर, कानड़ा

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

वह सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ। भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु। अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु। गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवै गु। तह अनहत धुनी बाजह नित बाजी, नीच हर धार चवावै गु। राम नाम इक तिल तिल गावै, मन गुरमत नाम समावै गु। नाम सुनै नामो मन पावै, नामे ही तृप्तावै गु। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पांत बनावै गु। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवै गु। माया पटल पटल है भारी, कर घूमन घेर कलावै गु। पाप बकार मनूर सब भारी, दिख दुत्तर तरयो ना जावै गु। भौ बैराग भया है बोहित, गुर खेवट शब्द तरावै गु। राम नाम हर पेटी है, हर राम नाम समावै गु। अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तुरावे गु जो जो जपै सोई गत पावे ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावे गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावे गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुरु नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हम मन लागी मिल संगत मल लह जावै गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करै अभमानी कड पानी की कड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगतां की हरनाक्ष ज्यों पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जिहवा एक होए लख कोटि लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावै गु ज्यों सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं बूझै तौ गुरमत नाम समावै गु सतगुर दाता जी जीअल को भागहीन नहीं पावै गु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावै गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टह टह पावै गु नानक दया दया कर ठाकुर मैं सतगुर भस्म लगावै गु।

तल कुंडे गुर अंकस शब्द दरड़ावै गु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखै हर लिव लावै गु सतगुर शब्द देर दे अंतर मुख अमृत नाम चुआवै गु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरड़ शब्द मुख पावै गु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवै बिख चार चार लिव लावै गु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढावै गु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावै गु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावै गु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावै गु सुपनंतर संसार सब बाजी।

आए, जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरह तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अम्यो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइय हर त्याय, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांछ है, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काल, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाय नित त्याय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाल, बिनवंत नानक कर दया दीज, हर रत्न बंध हो पाल, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

हर हर नाम त्याए मन, हर दरगाह पावह मान। जो इच्छा है सो फल पाए सी, गुर शब्दीन लगे ध्यान। तिल विख पाप सब कटी है, हो मैं चुका गुमान। गुरमुख कमल विगसिया, सब आत्म ब्रह्म पछान। हर हर कृपा धार प्रभु, जन नानक जप हर नाम। महला चौथा, हर हर नाम पवित्र है, नाम जपत दुख जाए। जिनको पूर्व लिखिया, तिन मन वसिया आए। सतगुर कै भाणे जो चले, तिन दालद दुख लह जाए। अपने भाणे किने ना पायो, जन वेखो मन पति आई। जन नानक दासन दास है, जो सतगुर लागे पाए पौड़ी। तू थान थनंतर भरपूर है, करते सब तेरी बणत बनावनी। रंग परंग शिष्ट सब साजी, बहो बहो विद भांत उपावनी। सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है, गुरमति तुदै नावनी। जिन होए दयाल तिन सतगुर मिलै, मुख गुरमुख हर समझावनी। सब बोलो हो राम रमो, श्री राम रमो। जित दालत दुख भुख सब लह जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस। हर अमृत हर उरतार, विच संगत हर प्रभु वरतदा। बुझो हो शब्द विचार, मन हर हर नाम त्याया। विख हो मैं कड़ी मार, जिन हर हर नाम ना चेतेओ। तिन जुए जन्म सब हार, गुर तुठे हर केताया। हर नामा हर उरतार, जन नानक ते मुख उजले। तित सच्चे दरबार महला चौथा, हर कीरत उत्तम नाम है। विच कल युग करनी सार, मत गुरमत कीरत पाई है। हर नामा अर हुर हार, वड भागी जिन हर त्याया। तिन सौंपया हर भंडार, बिन नावै जे कर्म कमावने। नित हों मैं होए खुआर, जल हस्ती माल नवाली है। सिर पी फिर पावै शार, हर मेलो सतगुर दया कर। मन वसै एकंकार, जिन गुरमुख सुन।

आपे वरतै सब जगत किया बणजारा सब ज्योत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्यावह तुद सफल से गावह गुरमति हर निरंकारा सब चवह मुख हो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित भवजन पार उतारा सलोक महला चौथा हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप है इयाणिया हर तुम वड अगम अगाह हर देहो प्रभु मत उत्तमा गुर सतगुर कै पग पाह सत संगत हर मेल प्रभ

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावह हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

हर यज्ञ में आगो चर यज्ञ में हर हर मिलिया आए अचिंत हर आपे घट घट वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे भिख्या पाएदा सब सिष्ट उपाई जी जंत हर देव दान दयाल प्रभ हर मांग है हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल हम गाव है हर गुण शंत महला चौथा हर कब सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै नित सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुतिया हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरा चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इकस से गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आदि जगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजिया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजिया सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कजिया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित बिद मिलह मलाहे हर हर जस जप तुझ पंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै हो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनी है तिस रूप ना रिखा जिस बजाए आप बजाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चट साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पहधा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिय सतगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगाह जन पैनाइयन जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख लह जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम त्याया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन त्याया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत वसेखिया सलोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत
कट कट आत्म राम है, प्रभ खेल कियो रंग रीत, हर निकट वसै जग जीवना, परगास कियो गुरमीत, हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले, जिन लिखिया तुर हर प्रीत, जन नानक नाम ते आया, गुर बचन जपियो मन कीत, महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो, भाग वसै बट भाग, गुर पूरै देखा लिया, नानक हर लिव लाग पौड़ी, तन तन सुहावी सफल घड़ी, जित हर सेवा मन पाणी, हर कथा सुनावहु मेरे गुर सिख हो, मेरे हर प्रभ अकथ कहानी, क्यों पाई है क्यों देखी है, मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजानी, हर मेल दिखाए आप हर, गुरबचनी नाम समाणी, तिन विट्टो हो नानक वारिया, जो जप दे हर निर्बाणी, श्लोक महला चौथा, हर प्रभ रत्ते लोयना, ज्ञान अंजन गुर दे, मैं प्रभ सज्जन पाया, जन नानक सहज मिले महला चौथा, गुरमुख अंतर शांत है, मन तन नाम समाई, नाम चितवै नामो

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी तुदे आपे जगते पाए कै तुदे आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाउ गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हों मैं रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संघार।

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल। हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो, हरि उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हृदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वड भागी संगत मिले, गुर सत गुर पूरा बोल। सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम झगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे, जन नानक काढ दे चन पौड़ी। जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई, जी जंत प्रित पाल दा जो करे सो होई। मात पिता सुत प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर राव रहया, जपयो हो जन कोई। सगल जपो हो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दरगह वान्य। महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा। सब जी तुम्हारे, सब तुदैनो आराध दे। दान दे प्यारे, हर दाता दातार हाथ कढ़िया। मीहो उठा संसारी, अनजमिया खेती भाओ कर। हर नाम सम्हारे, जन नानक मंगै दान प्रभ। हर नाम अधारे पौड़ी, इच्छा मन की पूरी है। जपी है सुख सागर, हर के चरण अराधी है। गुर शब्द रतनागर, मिल साधु संग उधार होए। हाटै जम कागर, जन्म पदार्थ जीती है। जप हर बैरागर, सब पवो हो शरण सतगुरु की। बिनसै दुख दागर, श्लोक महला चौथा। हौ टुंडेंदी सज्जना, सज्जन मैंढै नाल। जन नानक अलख ना लखिया, गुरमुख दे दिखाल। महला चौथा, नानक प्रीत लाई तिन सच्चै, तिस बिन रहन ना जा।

आरे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाउ हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया थाहा ना पाया पुस्तत करह तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहू पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ गुर के पग सिमरो दिन राति मन हर हर हर बसया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन शोहे जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर झर परिया जेते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसया हर जन हर हर हर प्रभ राखी जन नानक सरन पया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुर उपदेश हर नाम ते आयु सब किल बिख दुख लाथे रहाउ रसना एक जस गाए ना साकै बहु कीजै बहु रसनथे बार बार खिल पल सब गाव है गुण कह ना सकह प्रभ तुमंथे हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचह प्रभ दिखंथे तुम बड़ दाते जी जीन के तुम जान हो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का कहो तिन कहो क्या दिन थे सब तन मन अर्पो अर्प अरापो कोई मिले प्रभ मिल थे हर के गुण बहुत बहुत बहु सुबा हम तुष कर कर बरन थे हमरी मत वसगत प्रभ तुम रह जन नानक प्रभ समरथे कल्याण महला चौथा मेरे मन जप हर गुण अकथ संथई धर्म अर्थ सब काम मोख है जन पीछे लग फिर थई रहाउ सो हर हर नाम त्यावे हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दर्ग है प्रभ लेखा मांगे तह छूटे नाम त्याए थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख हो मैं मैल लग थई गुरतार कृपा हर जल नावाई सब किल विक पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंति अवसर आए बनत है तह राखै नाम साथी जन तेरा जस गावे हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पात्र रख बुढ़ थई।

हम बारिक मुगद एयान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहि दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावे भगत

नारायणी सगल भगत जाच है सुख सागर भावनिद तरन हर चिंतामणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निरभउ जिन श्री राम त्याया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीशर चरण सरण जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राखै जन नानक।

परस रे परस परस गुण गाइए नानक तत तत स्यो मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा।

नैन बैन सर्वन सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। एते उत दह दिस रवियो मेर तिन्ह समान जात कता तत पेखी है हर पुरख।

ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहा करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरू रहाउ बिशन महेश सिद्ध मुन इंदरा कै दर सरन परू काहू पहराज काहू पह सुरगा कोट मदे मुक्त कहू कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहू कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जून कल काल जाल दुख बनासन।

मन तन जापिया भगवान गुरपूरे सो प्रसन्न भय सदा सुख कल्याण रहाउ सर्व कार्य सिद्ध भय गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल कर कृपा प्रभ मेरिया करूं दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण महला पंजवां प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाउ हर बिन्यान न कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्व कटा के दाते स्वामी देहे सो पहरन खान सुरत मत चतराई।

जुगत अनक सुख हर भगत लवै ना लाम नु प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धाम नु कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक गटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ़ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांच है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जने उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सतगुर पारस की जय रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांच है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालख दाग लगीजै मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते ज्यो मरगाई पंक ना पीजै चंदन वास पुयंगम वेड़ी किव मिलिया चंदन लीजै काड खड़ग गुर ज्ञान करारा बिख छेद छेद रस पीजै आन आन समदा बहु कीनी पल बै संतर भस्म करीजै महा उगर पाप साकत नर कीने मिल साधु लूकी दीजै साधु साध साध जननी के जिन अंतर नाम तरीजै परस न परस भय साधु जन जन हर भगवान दिखीजै साकत सूत बहु गुर जी भरिया क्यों कर तान तनीजै तंत सूत किस निकसै नाही साकत संग ना कीजै सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवीजै अंतर रतन जवे हर मानक गुर किरपा ते लीजै मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हो जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अत उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीतम।

तेरा गहना मत मकसूद, नाए तेरा नाव मन्ने सब कोए, विण नावै पत कबहु ना होए।

जाय। प्रभाती महला पहला तेरा नाम रखन कर्म चानन सुरत तिथे लोए। अंधेरे अंधी वापरे सगल लीजे खोए। इहो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवर नासत करन हार अपार। रहाओ पताल पुरियां एक पार हो वह लाख करोड़।

आई मन चित बहुत बफावे एते गुण एतियां चंगियाईयां दे ना पछोतावे तुद सलाहन तिन धन पल्ले नानक का धन सोई जे को जियो कह ओना कहो जम की तलब ना होई प्रभाती महला पहला जा कै रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुर मिले निरंजन पाया तेरा नाम है।

जल जाए। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए। गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह।

जाकी वास बनासपत सौरै तास चरण निव रही है। गुरमुख जी प्राण उपज है गुरमुख सेव कर जाई है। गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है। प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है। पढ़ पढ़ पावे मान आपा मदे आप परगासिया।

जैसे हरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है, तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर परगासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण, जिसते हो आसोई कर मानिया, नानक गिरही उदासी सो परवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हौ तिस कै बल जाई, पाप पुन की सार ना जाने, भूला फिरे अजाई, बोलो सच नाम कर।

ता को समझावण जाइए जे को भूला होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाओ प्रभात है शब्द ते आइए छोड़ हो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। प्रभाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया नगर बुठा साबास जा तू राख।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वक।

जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटी है नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

कटाई बिन गुर बूडो ठौर ना पावे जब लग दूजी राई एहनस जिया देख संभाले सुख दुख पुरब कमाई करमहीन सच भीख्या मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती महला पहला मस्त करूं मूर्ख जग कहिया।

जाने, जिसनो नजर करे सोई बिद जाने। मैं मैलो उजल सच सोए, उत्तम आख ना उचा होए, मनमुख खूल महा बिख खाए।

है कहावै सोए। प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल बधाया पेंद घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाउ। बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादे मारी है छूटस साच नाय। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाए। जग खोटो सच निर्मलो

निजर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

साच रहै लिवलाई, हर हर नाम जपहु जन पाई। गुर प्रसाद मन अस्थिर हुवै, अन दिन हर रस रहिया आगाई रहाउ। अन दिन भगत करहु दिन राती, इस जुग का लाहा पहाई। सदा जन निर्मल मैल न लागै, सच नाम चित लाई। सुख शिंगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखोट भंडार भरे कदे तोट ना आवै, सदा हर सेव पाई। आपे करता जिसनो देवै, तिस वसै मन आई। नानक नाम त्याए सदा तू, सतगुर दिया दिखाई।

कहया ना चित धरै, कर आचार बो संपो संचय, जो किछ करै सो नरक परै। एको शब्द एको प्रभु वरतै, सब एकसते उत्पत चलै। नानक गुरमुख मेल मलाए, गुरमुख हर हर जाए रलै। प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सहलाए। पूरा भाग हुवै मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाहे रहाउ। अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मदे कोई विरला ले। जिसनो अपनी नदर करे, गुर के चरण मन माहे वसाए। दुख अनेरा अंदर हो जाए, आपे साचा लए मलाए। गुर की बाणी स्यो लाए प्यार, एथै उथै हो आधार। आपे देवै सिरजनहार, सच्चा मनाए अपना पाणा। सोई भगत सुगड़ सुजाना, नानक तिस कै सद कुरबाणा। प्रभाती महला चौथा बेपास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रसक रसक गुण गावह गुरमत।

अमर दे अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान कित बिद क्यों पाइय प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड्डे भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर किरपा तारी हर नाम दियो खिन दान प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोल है सवरैन संभाल है हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा गुर पग झार है हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मोहे फाथे माया जाल खिन पाल हर प्रभ हृदय ना वस्यो रिन बांधे बहु विदबाल सत संगत मिल मत बुद्ध पाई हौ छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर किए शब्द निहाल हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल बिख पौ जल डुब दे काढ ले हो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रस कर सीक गावत सुनत दो पय मुक्ते जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक मेरा मन हर हर राम नाम रस पीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिन्ना मस्तक उजल टीक हर जन सोभा सब जग ऊपर जो विच उडवा सस कीक जिन हर हृदय नाम ना वस्यो तिन सब कारज फीक जैसे शिंगार करै देह मनुख नाम बिना नकते नक कीक घट घट रमैया रमत राम राय सब वरतै सब मह ईक जन नानक को हर कृपा तारी गुर बचन त्यायो करी मीक प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभ तारी मुखार हर नाम हम कहे पतत पावन हर नाम त्यायो सब किल विख पाप लहे जप मान राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बस्यो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उदयानी ते साकत मूड मोहे ज्यो मृग नाभ बसै बास बसना भ्रम भ्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देव हो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर धरियो हर राम नाम रव रहे प्रभाती महला चौथा मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा सतगुर बचन सुखाने ही अरे हर तारी हर प्रभ कृपफा मेरे मन पाज राम नाम।

साध संगत में बसी गोपाल, गुर मिले आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की सोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जाने पेख पेख मन मह हैरान सो सुखिया सब ते उत्तम होए जां कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवे ना जाए अन दिन प्रभ के

सेवा, नानक उदर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, समत देव हो।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुइये तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुरदीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिन सह अज्ञान।

जो तिस पावे सो पल होस, तिस गुर को हौ सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई। ऐसा गुर पाई है वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। आठ पहर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभ की सरनाए, प्रभाती महला।

होई। सदा सदा प्रभ जी कै संग उतरी मैल नाम कै रंग। चरण कमल सिंह लागो प्यार बिनसे काम क्रोध अहंकार। प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर सिंह मन माना। सुन सज्जन संत मीत सुहेले नाम रतन हर अगह अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निद गाइए कहो नानक वड भागी पाइए। प्रभाती महल।

गुरपूरा पाइय वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ। पाया लाभ वजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई। सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान। बिरसे काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार। प्रभाती महला पंजवां गुर पूरा पूरी ताकी कला। गुर का शब्द सदा

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां पुरबान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला।

संत संगत मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस, सर्ब कल्याण सूख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे, प्रभाती महला पंजवा।

फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चले प्यारी, माया ममता है बहुरंगी।

हर गुण गावे निज घर वास अमर पद पावे तां दर साचे सोभा पावे गुर सेवा बिन भगत ना होई अनेक जतन करे जे कोई हम मैं मेरा शब्दे खोई निर्मल नाम वसै मन सोई इस जग में।

मन वसाय विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर से।

भंग करन है, खसम ना पावे साध, बिन नावे होर कमावना, फिक्का आवे साध, दुष्टि सभा विगुती है, बिकवाती जीवन बाद, ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई, सतगुर सेव सदा सुख होई, बिन सतगुर

काई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाने क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चलह चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाण बोली भाई सुपाई जो किछ वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगद आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अवमान ना जाई जियो अवमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत खोई।

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कहिए कास, गुरमुख विरला चीनै कोई, नाम बिहु नाम मुक्त ना होई, ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी, एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटै नाम संभाल, आपे सदे ढिल ना होई, शब्द मरे सहला जीवे सोए, बिन गुर सोजी किसे ना होए, आपे करे करावे सोए, झगड़ चुकावे हर गुण गावे, पूरा सतगुर सहज समावे, एहो मन

हर जस कर्म धर्म पथ पूजा, काम क्रोध अग्नि मैं पूजा, हर रस चाखिया तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर ना दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा, एको रव रहया सब ठाई, अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई, रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास, ज्यो पावै त्यो रखो अरदास, सच जिहवा हर रसन रसाई, गुरमत छूट।

पाई। प्रभाती महला पहला, एक तुर बख्श लए गुरपूरै, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, तिपत नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाईऐ, दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपी।

पुन त्रै मिल जगति उपाया ऐसा बल शल तिनको दिया हुक्मी ठाक रहाया कैसे जन विरले जागे अंदर

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

सच्ची भगत सच्चा हर मंदर प्रगटी साची सोए रहाव। हर मंदर हो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। मन मुख मूल ना जाननी मानस हर मंदर ना होए। हर मंदर हर जियो साजे।

मन लूट है मोहया दूजै पाई, पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई। हर मंदर मह हर वसै सर्ब निरंतर सोई, नानक गुरमुख वणजियै सच्चा सौदा होय। प्रभाती महला तीजा तै पाए जागे, से जन जागरण करह हऊ मैं मैल उतार। सदा जाग है कर अपना राख है, पंच तस्कर काढ़ मार। मन मेरे गुरमुख नाम त्याय, जित मार्ग हर पाई है, मन से ही कर्म कमाई रहाओ। गुरमुख सहज तुन उपजै, दुख हो मैं विचों जाई। हर नामा हर मन वसै, सहजे हर गुण गाई। गुरमती मुख सोहणी हर राखिया उर तार, ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार। हऊ मैं विच जागरण ना होवई हर।

कीड़े विस्ताराते मर जम्मह होहे खुआर जिनको सतगुर भेटिया तिन्ना विटोह बल जाऊं इनकी संगत मिल रहा सच्चे सच समाऊं पूरे भाग गुर पाईए उपाय किते ना पाया जाई सतगुर ते सहज उपजे हउमै शब्द जलाई हर सरनाई भज मन मेरे सब किछ करने जोग नानक नाम ना विसरे जो किछ करे सो होग बेपास प्रभाती महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मात पिता भाई सुत बनता चूगह चोग आनंद सिंह जुगता।

आई प्रभ सो प्रसन्न पये गोपाल जन्म जन्म के मिटे बेताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ इशनान करी जा चरण कमल निमख हृदय तारी गोविंद जपत सब कार्य सारी उच्चे ते उच्चा प्रभ थान हर जन लावह सहज ध्यान दास।

जो किश हुआ सो तेरा पाना, जो इव बूझे सो सहज समाना। कहत कबीर किल बिख गए छीना, मन भया जग जीवन लीना। प्रभाती अल्लाह एक मसीत बसत है, अवर मुल्क किसके।

कही है सोई, अल्लह अलख न जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब ने रंजन दीठा। प्रभाती बेद कतेब कहो मत झूठे।

विनाशी माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुंह तोहया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिन में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया, तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया, प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई, रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझ बूझ नहारा, पंचे शब्द

है आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ता की अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ता का अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बीखु बन बीखे बास ते सुख लागेला सर्बे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म लुकाया।

बिखियन स्यों अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाउ मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमुख कीन दारा सुख पयो दीन पगहों परी बेरी नानक

दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेह सो प्रसन्न माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सोभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अच्युत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं।

वरतंत बनासन गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिंग नानक भगवंत भजनासन किरपंत हरियं मत तत् ज्ञान बख्शी देह बुदा कुशल थान बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेदा गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विद प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धिहं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीप्य बैसवांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वज्जन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दातार है नानक गुर सेवा क्यं न लभ्यते अतरंग तरंग धारण है निर्तनंग धन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बलहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ है पूर्ण पुरख भगवान है भगत वच्छल करुणामय घट घट बसंत वासुदेव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रत्न जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पूजन्ते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते दृता अनुग्रहंग बिंद है जस्य सिमरन रदंतर है।

संत ना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बास नह सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहं तन निमरता आवदह गुण गोबिंद रमणं ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ लाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन कर

प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्टन है, कुकर है सुकर है गर्द बह काक है सर्पन है तुलखल है चरनार बिंद भजनं हृदयंग नाम धारण है कीर्तनं साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूतन है नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राज है नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता विलास है नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग

प्रभं जात कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजन है दुखियं पयंत सुखियं तै पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बामन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सुवजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरन है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियं पूर्णं पुरख है नानक नाम साध सुवजन है अजापो गंत कांड मूलं।

कलं सिद्रं कोट बिघ्नं अपराधं किलबिखमलं परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापतं मृत्यु जन्म परमंत नरक है अनक अपावंगना सिद्ध्यति निर्मलं साध संग है जपंत नानक गोपाल नामं रमंत गुण गोविंद नित प्रत है तरन सरन स्वामी रमन सील परमेश्वर है करन कारण समर्थ है दान देत प्रभु पूर्ण है निराश आस करनं सगल अर्थ आलय गुण निधान सिम

एद परमं साकत प्रिसनं तां सुर्जनः अस्थितं सोगहर्खं पै खीनं तां निर्पवः पै अत्मियं महानगरवासं धर्मलक्ष्यं प्रभमय साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं के अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दनः गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है हर करन हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है एकामं नरक विश्रामं बहुजोनी परमावन है चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है तब पै बिमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अधमं नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं

अहंकारं पापात्मा मित्रं त्यजन्त सत्रं दृढ़ंत अनक माया बस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निदान जगद गुरु हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरु हे शरण योग दयाल है दीना नाथ मया करु शरीर स्वस्थ खीन समय

पवित्र है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वच्छल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अच्युत है। जेन कला धारियो अकाशं, बैसंतरं काष्ट बेष्टं। जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं। जेन कला मात गर्भ प्रतपालं, नह सिदंत जठर रोग।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धेहं संत संगेन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनं जथा विपरा अमरहीनं जथा

संत स्वजन है आचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो।

परम बादं वरत इथ है सुध असरन है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वं तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरं सहकंगता हरियं बूडंगता तरियं ऊणंगता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्म रतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरण बहु विघ्न करण उचरण सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म

कर्पूर पोप सुगंधा परसमनुख्य देहं मलीनं मज्जारुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अगे।

हाथ चलंथो पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मृतेख बांध वह लब्धे हम साध संगेन नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैला गर संगेन निम बिरख से चंदन है निकट बसंतो।

गोविंद रमण साध संग मह सुमंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानं नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमण गोविंद है नानक लब्धिहं बड भागण है हर लब्धो मित्र सुमित्तो विदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमित्तो सोई नानक सखा जी संग कित्तो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत है हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार।

नानक हर पूर्व लिखण है दसन बिहून पयंगं मंत्रं गारडी निवारं ब्याद उपारन संतं नानक लब्ध कर्मण है जाथ काथ रमणं सरणं सर्वत्र जियण है ताथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है चरणार बिंद मन भिद्यं सिद्धं सर्व कुशलन है गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण है शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उदरण है संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलह समूह सगल उदारं बड़भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहण है लब्धं साध संगेन नानक बड़भागी भेटंत दर्शन है सर्व दोख प्रंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतरण है लब्धेन साध संगेन नानक मस्तक लिखियण है होयो है होवंतो हरन भरन संपूर्ण है।

हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूप पावती उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसिया कंत सावड भागने तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागने हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया हर हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया आसा इती आस के आस पुराइया सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तर।

है सच तना सुपना ऊ भी पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

जा नहीं हर हां हर चंदौरी पेख काहे सच मानई जिसकी पूजा औध तिसे कौन राखे वैदक अनक उपाव कहां लो पाखई।

सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदा संदा संग इकट्ठा होया औखद आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पस

प्रेम की दम के हो होती साट, रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत, चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बीते बांधे कमल मह भवर रहे लपटाए। जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म ना जाने मर्त हिरत संसार, प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जाको प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहू जाहे। लख घाटी ऊंचो घनो चंचल कीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन स्याम चंदर बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट

रे हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए कबीर आई।

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया छाछ पिए संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बुलोया

आए हों बलिहारी तिनको पैस जो नीकस जाए कबीर यो तन जाएगा सको तने हो बोर नांगे पामो ते गए जिनके लाख करोड़ कबीर यो तन जाएगा तमने मार गलाए कै संगत कर साध की कै हर के गुण गाए कबीर मरता मरता जग मुआ मर पी ना जानिया कोई ऐसे मरने जो मरे बहुत।

कह यार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्ब ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी ऊपर शतर तर ते फुन तरनी गाड कबीर गर्ब ना कीजिए ऊंचा देख आवास आज

होए, अजो सो नाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए। कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयांग। कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाहेंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो।

कोई सांझा करे कबीर सियों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो

थोड़ा जल माछुली चीवर मेले ओ जाल ए टोग नैना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते

तैसनों की कुकर भली साकत की बुरी माए। ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए। कबीर हर

जो कर कर है पीवह निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए यूं कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी

और काया हांडी काठ की ना उह चढ़ वो होर। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदोरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसी है गुण को मरिया रोए, अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय। कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट, गुर जो ना चेत है अपनो अदम।

कबीर रमैया कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय, पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाय, कबीर ऐसा को नहीं।

सती पकारे चेहे चढ़ी, सुनो हो वीर मसान, लोग सब आया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले

आए जिन हर का नाम ना चेतेओ बद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की अवरै आस नरास नरक परह ते मानई।

क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते

आप किए राखे तलै दुराए प्रगट भये निदान सब जब पूछे धर्म राय कबीर हर का सिमरन।

आई। सर्पन हुए कह अवतरे जाए अपने खाए, कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ही राखे नार। गद ही हुए कह अवतरे पार सह मन चार, कबीर चतुराई अत कणी

जा मुख कहिए राम देही किसकी बापुरी, पवित्र हुए गो ग्राम कबीर सोई कुल पली, जा कुल हर को दास जेह कुल दास ना उपजै, सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन, लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली, जो हर सिमरत दिन जाए कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ाए।

आय जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाय। बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाई है साथ ना लीजै कोई, पाछे पाओ ना दीजिए आगे हुए सो होए। कबीर जग बांधे हो जे

कहबे को सूबा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह के कहो कहे ना को पते आए, हर जैसा तैसा उही रहो हर खुगुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचर कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चात्रक ज्यों तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जो निस बिसर आए मिले परबात, जो नर बिसरे राम स्यों ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बिशोरिया रहो रे संख मचूर, देवल देवल ताहड़ी दिस है उगवत सूर। कबीर सूता क्या करह जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मह सो क्यों सो है सुख। कबीर सूता क्या करह उठ के ना जपह मरार, एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड पसार।

स्वांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजै सब संसार।

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कांठे रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है धूमा ताम कबीर साकत ते सूकर भला राखे आछा गांव ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाम कबीर कौडी कौडी जोर।

अचाहिया ज्यो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या भया सीरा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए ताते भली मधु करी संत संग गुण गाए कबीर पाटन ते उजर भला

सा पूजहै नारथन करोड़। कबीरा एक चंपौ देख्यो हीरा हाट बकाय। बनजन हारे बाहरा कौडी बदले जाय। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां लोग

आए मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया शब्द जो बाह आएक लागत ही पुए मिल गया परया कलेजे शेक कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाइए फूक कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंतर ना पुजै

दै हाथ, जब ही पाई है पारखू तब ही रन की साठ। कबीर काम परे हर सिमरी है, ऐसा सिमर हो नित, अमरापुर बासा करहु हर गया बोहर बित। कबीर सेवा को दोए भले,

पाच परी बहीर एक अवघट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किस का लाज सी जब

सरवर परा पी ना सके कोई नीर पाल बड़े तह पायो तू पर पियो कबीर कबीर पर बाते तारे खिसे।

असंत मलयागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जानै नाही कोई कै जानै आपन तनी कै दास दिवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पानी।

के बिन मिले पलट पई सब खेहे। जह अनपौ तह पै नहीं, जह पौ तह हर नाही। कहियो कबीर बिचार कह संत।

पास चोट सहारे शब्द की पास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत

तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आप है आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतकहार।

ते कार मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद

होए। उस साचे देवान मह पल्ला ना पकड़े कोई। कबीर धरती अर आकाश मह दोए तू बरी अवध। हक दर्शन संसे परे हर चौरासी ही सिद्ध। कबीर मेरा मुझ मह किछ नहीं।

हुआ मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू।

दास कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोले जिस राखे सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छड़ाए परापूर्वली पावनी प्रगट होई आए कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवा कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना।

आय संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे सी पोषाय लै।

कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करै या मेरे चितवे होए अपना चितवे आहर करै जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सला।

ऐसा राम भज नाहे ता बिनठी बात। कबीर केसो केसो कुकी है ना सोई है आसार। रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन भया मन कुंचर मय मंत। अंकस ज्ञान रत्न है खेवट।

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई ठाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे

अमन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पचमुआ, चारों बेदोह माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, शीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करह, ताको बड़ो अपाग। सलोक सेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ है तनवरी।

नाती तोती संभही सुती आए निचिंद फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंद जो बन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए फरीदा कितनी जो बन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला वान दुख बिरह बिछावन लीप एहो हमारा जीवना।

तन बेहो ना उपजै सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहू के रहे कम। फरीदा दर दरवा जय जाय कै क्यों दिठो कड़ियाल, एहो नदोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल। कड़िए कड़िए मार।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल ना लाए मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी।

फरीदा जो डोहागण रब दी चूरे दी चूरे जा कुआरी ता चाओ वेवाही ता मामले फरीदा एहो पछो ताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवै उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारन जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाए चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

तै पासों वे लद गए तू अजय ना पतीण हो हे फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संधि पाही महला पंजवा फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे मंदा किसनो आखिए जा तिस बिन कोई नाहे फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए फरीदा पंख परहोनी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज फरीदा रात कथूरी वंडी है सुत्या मिले ना पाओ जिन्ना नैन निंदरावले तिन्ना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली मांझ वसूला बाग जो जन पीर निवाजिया तिना अंचना लाग महला पंजवा फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुमनड़ी दे विरले के पाइयन जिन्ना प्यारे ने कंदी

चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा हुई रहे

जो जागन लहन से साई कन्नो दात दाती साहेब संधिया क्या चले तिस नाल एक जागन दे ना लहन एक ना सुतिया दे उठाल टूडे दिए सुहाग को तौ तन काई कोर जिन्ना नाओ सुहागनी इन्ना चाक ना होर सबर मन कमान ए सबर का नीहणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन एवै जलेन होण नजीक खुदाई दे भेत ना किसै देन सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दिड़ कर है वध थी वह दरियाओ टुटना थी वह वाहड़ा फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत इकन किन्ने चालिया दरवे सावी रीत तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह प्री मिलन तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हौ टुनेंदी सजना सजन मैंडे नाल नानक लख ना लखिया गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरंदिया बग्गा आया चाऊ डुब मुए बग बप्पड़े सिर

जे जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वेसो हो करी जित बासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैने वेस कर तां वासिया भी कंत मत हुंदी होए आना ताण हुंदे होए नताना अणहुंदे आप बंडाए को ऐसा भगत सदाए।

सरो तार ओपत परलो एकै निमख तो घर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल भवन धारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहे हो श्रभ।

आप ही धारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलाख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार।

आकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होहि कृपाल सो जन प्रभ तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिय दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिय अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख।

भयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसे हो तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप अभुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम ना पवै अमुलो जेह कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हों पाए हर गुरु नानक।

पव जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्श मन चाऊ भगत एहो मन ठहरावे, बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगत सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।

मद माता विचरत बिकल बडो अभमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हतानी।

सरन मन मोहन जोहन पाप बदारन को हर तारन तरन समरथ सबै बिद कुलह समूह उदारन सौ चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तौ मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहां दुख पौ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रौ रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार करी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अरबंदप बूजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गह ले हो कृपाल कृपा निद नानक काट परम परी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महा मुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपन।

हसव ना गाज सिंघासन छिन मह त्यागत नाग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्तर साजन साख

ज्ञान हे भगवंत कृपा करता रहु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बेदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीनानाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अरदानम एक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती।

सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बरंग करत ब्रह्म मोह कै कूप गुबार परयो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसयो जम दूतन दन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत सासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत पुदर है से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रहयो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चलह हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोहो छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु पांति विच रह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत।

सागर दुर्त निवारण शब्द सरी गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरी गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजा

लोचन। भगत बेन गुण रवे सहज आत्म रंग माने, जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने। सुख देव प्रीख्यत गुण रवे गौतम रिख जस गायु, कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायु। गुण गावे है पायाल भगत नागाद पुयंगम, महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचारे, ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो। गुण गावह नवनाथ धन गुर साच समायु।

नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो ता धरियो मस्तक हथ सहज अमियो बुठो सज सुर नर गण मुन बोहे अगाज मारियो कंटक काल गर्ज धावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ली समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रत उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत धार

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परसमरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप परनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वास करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिरन सिंह अंगरऊ।

खवै कस बिमल बीचार है एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो हर परसे कल समुल वै।

अस जाग्यो अलख कल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाध रव्यो समान निरंतर उदारो चित दारद हरन पिखंते कलमल त्रसन सद रंग सहज कल उचरै जस जंपो लहणी रसन नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध।

है। नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए, दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए। सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच, सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द, सच नाम संगती बो है जिस सच संयम वर्त सच, कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान। हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल, सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे। गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे, सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई, दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। सोइये महले तीजे के

संसारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थपियो जीन सर्व सिद्धि काव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन अमृत।

नाम रस खान हर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी कुल संभूह समुद्धरे पायो नाम निवास सक्यार्थ जन्म कल उच्चरै गुर परसेओ अमर परगास बारज कर दाहिणै सिद्ध सनमुख मुख।

अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़ कर त्यायु परसे हो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सके अत चरण गुर अमल पवल रह हाथ ता पर सके अत हाथ लगे है गुर अमर पै जी ता पर सके अत जी गुर अमर पणिज नैन ता पर सके अत नैन गुर अमर पखिजै श्रवण ता पर सके अत श्रवण गुर अमर सुनिजै सक्यात सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यात सो

अलख है एक एक कर वरनियो गुरु अमरदास जाल पपण है तू एक लोड़ है एक मन्यो जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुख मांगद करतूत राम जंप हो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई तैं लोभ क्रोध तृष्णा तजे सो मत जल जानी जुगत गुरे अमरदास।

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुकह। गुरु अमरदास परसीय अपौ लभे गौ चुकह। एक बिन दुगण जो तौ रह जा समंतर मान वह लह। जाल पाप दार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिलह। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रहु। ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहु। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमण बखाणो। जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो। बोहिथो विधाते निर्मयो सब संगत कुल अधरन। गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कला तार जग मह परवर्यु। निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो। जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो। जेहे सिख है संग्रहयो तत हर चरण मलायो। नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहने संग हो। गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो। जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है। सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है। भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है। गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार है। नानक कुल निम्मल अवतरयु गुण करतार है उचरै। गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दर

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करूं साहिब की सेवा जब गुरु देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान

साध सलाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनक कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तै निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिख

इव जुद्ध कार कन हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान।

कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मग ना हुटै संजम सत संतोख सील सनाहु मुखुटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरियो जग जस तूर बजायो गुरु रामदास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लागत।

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भये सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै।

पायो इन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणे अनुभव नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हूं रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारै शब्द रिद बीचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान बिख्याता अहन सत्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दरिद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै।

कार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्या

बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कमन उपमा देओ कमन सेवा सरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच क्रम जान अनक

ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रि भवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण है सुनियो बिख ते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहण माणिक करै ज्ञान गुर कहो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

गुर कर सच बीचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपुन, अगन कट है सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कह, जिन गुरु ना देखो ना हो कियो, ते अक्यात संसार में, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समरथ कल युग, सुनत समाद शब्द जिस केरे, हुन दुखन नास सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान।

उस पिवन की बंचत सिद्ध कहो भिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर बिपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समर्थ गुरु सिर हाथ धरयो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पन दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाकश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया

सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाई गुरमुख है त्याई अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उदरहो द्वार हर मानी ओह ज्यों ता सब सुख इत उत तुम बंचो ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभाते है कर है स्नान स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हो बात निश्चल ध्रु जानी तेई जीव काल ते बचा।

देख रूप अत अनूप मोह महामग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आदि।

काल मुकट शीस मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो, सत साच श्री निवास आद

निदान सच जान मंत्र एह निस बासर हुए कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड़ तो हो मैं का फंद काट सा

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित।

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर

दूर कर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जां को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कबहु का को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मन गह नात जात कबलास को जां को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज तिहों लोग परगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख परहर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अतलुभित आल समूह जो कुसुम सुबासे विदहमान गुरे आप थप्यो थिर।

धरियो गुर हाथ। तीन भवन भरपूर रहियो सोई, आपन सरस कियो ना जगत कोई। आपने आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे। अविनाशी अचल अजूनी संभो,

चित लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत।

सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल पण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगमन।

गुरमत ब्रह्म पछाणियो कल जोड़ कर सुजस बखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुरु अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दिरड़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनभव ठहरायो जनक राज बरताया सत जुग आलीना गुर शब्दे मन मानिया अपतीज पतीना गुर नानक सच नीम साज सतगुर संग लीना गुर अर्जन घर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गूड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो अजोनी संभवियो सुजस कल कवियन बखाणियो गुर नानक अंगद वरियो गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जुन वरियो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजुनी संभव कै भंजन पर दुख निवार अपार अनंपो अगह गहन भ्रम भ्रांत दहन शीतल सुख दातो असंभवो उदवियो पुरख पूर्ण बेदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पार

पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बक्ता कुल सोडी गुर राम दास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नान खुटै गुर राम दास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जान्यो पै निरपहु माण्यो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर

अपार सार सुपार परायु गुर गम प्रमाण अजर जरियु सार संतोख समायु गुर अर्जन कल उचर तै सहज जोग निज पायु अमयो रसना बदन बरदात अलख अपार गुर सूर शब्द हूं मैं निवारियु पंचाहर निदलियु सुन सहज निज घर सहारियु हर नाम लाग जग उधरियु सतगुर हृदय बसायु गुर अर्जन कल उचरे तै जन कह कल सुदी पायु सोरठे गुर अर्जन पुरख प्रमाण पार्थ उचाले नाही नीजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार।

लिखियो अक्षर मस्तक तुर परगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायु पारस परस परस परस गुर गुरु कहायु पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज।

पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाण बीजे दान सो खत्री।

कला कबला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां जै सेती मेरा संग जित डिठै।

वह सदा सदा सुरती ही पत होए। सर्फ है सर्फ है सदा सदा एव गई विहाय। नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही ले जाय। दोष ना दे राय नो मत चले जा बुढ़ा होए। गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तो है। पूरे का किया सब कुछ पूरा काट।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़िया नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है अत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है

जिव है मन चढ़िया दसवें आकाश किथे ऊग ना भूख है हर अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम परगास काम क्रोध का चोलड़ा

अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया। एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई। बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई। जो बन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई। पुत कलात मोह।

अंदर शुद्ध नहीं। गुर बचन ना करहे विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है। नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की राखदा। हौं सद बनेहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे। जन नानक ता का दास, माया पुयंगम सर्प है। जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिन कौ पूर्व लिखिया। तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्मल।

ਜਸਮਾਵ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਨ ਸਲਾਗਾ ਭਾਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਧੂੜ ਤਿਨ ਹਉ।

बिन हर शांत न आवई किस आगे करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बूझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमान दे अंत न पारावार। हर कृपा।

आय सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आय जन्म मरण की मल उत्तरै जन नानक हर गुण गाय तुर हर प्रभ करतै लिखिया सो मेटना न जाई जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राय चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट।

लिया अंतर अज्ञान गुबार। तब नर सुत्ता जागिया सिर डंड लगा बहु पार। गुरमुख करा ऊपर हर चीते।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हम मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुपाई ओना मैल पतंग ना लगई, जे चलन सतगुर पाई मनमुख झूठ ना उतरै, जे सौ धोवन पाई नानक गुरमुख मेलियन, गुर कै अंक समाई बुरा करे सो केहा सिजै, अपने रोहे आपे ही दज्जै, मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै, गुरमुख होए इस सब किस सुजै।

हर जग जीवन उर धार, नानक गुरमुख सोहणे तित सच्चे दरबार। हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस्त अनेक है नवनिध नाम समाल, धन भगवंती नानका जिन्ना गुरमुख लद्दा हर पाल। वडभागी गढ़ मंदर खोजिया हर हिरदय पाया नाल, मनमुख दह दिस फिर रहे अत तिसना।

सुख पाया, अत तिसना तज विकार, जन्म मरण का दुख गया, जन नानक शब्द बीचार, हर हर नाम त्याए मन, हर दरगाह पावह मान, किल विख पाप सब कटी है, हम मैं चुकै गुमान, गुरमुख कमल विगसिया, सब आत्म ब्रह्म पछान, हर हर कृपा धार प्रभ, जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानी है भाई।

भाई अपनी पत के साध आपे खाई किसका क्या सलाही है भाई दर्शन कहो बल जाई सतगुर विच वडियां वडियाईयां भाई कर्म मिले ता पाई एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फराई संगत ढोई ना मिले भाई बैसन मिले ना खाओ नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिन्ना तुरे कमाया नाउ तिन विट हो हों वारे आ भाई तिन कौ सद बलिहारे जाओ से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन अन दिन सेवन गुर अपना अनद रहन नानक से मुह सोहने सच्चे दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले है सच कमाहे सच्चा शब्द मन बसिया सतगुर माही समाहे सच्ची राशि सच धन उत्तम पदवी पाहे सच सुन है सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगाह बैसना सच्चे माही समाहे नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाहे बाबी हा प्रियो प्रियो करे जल निद प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तिस चुकै सहज उपजै चुकै कूक पुकार नानक गुरमुख।

तन मन सुख होए जा तत बूंद मोहे पाए अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चै शब्द समाए भय का सहज श्रृंगार करे हो सच।

जोग पाइए सतगुर कै उपदेश चार कुंडा जी पवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेट हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरत खसम का मत पवी फिर चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम सुमाए वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिख उतरे तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुर।

हो, क्यों सज्जन मिलह प्यारिया, औंट नेंदी तिन सज्जन सच सुवारिया। सतगुर मैं दा मित है, जे मिले ता एहो मन वारिया।

गुरु का फरमाया मन ना सकी दुत्तर तरिया ना जाए नदर करे जिसे अपनी सो चले सतगुर पाए।

नानक थीवन पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया राती अतै दे हो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाईऐ अन दिन रह आनंद नानक सहज समाईऐ।

कर्म कार नानक ले हो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

भव जल तरै संसार, मन चिंदिया फल पाए सी, अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए, सब दुख निवारण हार, मनमुख सेवा जो करे, दूजे पाए चित लाए, पुत कलत कुटंब है, माया मोह वधाए, दरगह लेखा मंगी है।

हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हो फिरा पी हिरदै रखा संभाल जिन्ना एक मन एक चित त्याया सतगुर सौ चित लाए।

कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग

आए जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरै नानक लय छाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो भौजल जग

हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम गड़ाया मन अनंत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले।

लागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार।

दिन जो नानक भजे सफल होहे ते काम। जिह बागुन गोबिंद भजो करन सुनो।

कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हर

कहो नानक हर भज माना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिटयो ना जम को त्रास कहो नानक।

भई चितवत रहे उठ गौर, नानक फांसी गल परी जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए कहो नानक सुन रे मना हर भावै सो होए।

नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे।

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस स्याणपा लख होए ता एक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई।

है मन कोई। पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावे दर गय मान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुरेक ध्यान। जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत। जे को

जत पहारा तीर्ज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तिर रहे समाए

आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे भंडारा, जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाम, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिया दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचे नाए रहाओ, साचे नाम की तिलवड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे।

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तनह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तैं डूबी अले, मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्रापत मान खुदे हुरिया, गोबिंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कदै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

जप तप संयम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति आखिए, करते का होए बिचारो, तित कर गावहो सोहेला सिबरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभाव का सोहेला, हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालिया, देखेगा देवन हार। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिसदा ते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावहु तेलो, देहो सजन आसीसड़िया, जो होवे साहिब स्यो मेलो। कर करे हो पहुंचा, सदले नित पवन, सदन हारा सिमरिय, नानक से देह आवन। राग आसा

माया रचना तो हो अंधे नाम विसारिया ना तिस एहे ना ओहो रहाओ। जीवन मरना जाय कै इथे खाजै काल जिथे बै समझाई है तिथे कोई ना चल्यो नाल।

बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिले है अंक सहे लड़िया, मिलके करे कहानिया समर्थ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारी आ मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुरबचनी पौ खाए। नानक सच्चा पातशाहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी होमै मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थिए गुरमुख शब्द समाए। रहाओ केता आखण आखिए आखण तोट न होए, मंगण वाले केतड़े दाता को सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए। संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थिए अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सबदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए। पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेण। रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिन तृप्ति छुट सी सहज मिलया है सुख होए। निज कर महल पछाणिए नजर करे मल धोए, बिन गुर महल ना उतर है बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवरते अगयास, नानक देख दिखाई है हो सतबलिहार जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख न उठिए पिर बिन दुख न जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर। रहाओ आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान।

सब मुठ्ठी हंकार राओ। जिनी नाम विसारिया दूजी कर लग, दुबदा लागे पच मोए अंतर तृष्णा अग। गुर राखे से उबरे होर मुठ्ठी तंदै ठग, मुई प्रीत प्यार गया मुआ वैर विरोध। तंदा थका हो मुई ममता माया क्रोध, कर्म मिले सच पाई है।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए। एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान। गुर मिल पौजल लंघीऐ, दरगै पत परवान, नानक ते मुख उजले, तुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला। वणज करो वणजारियो, वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है, जैसी निभ है नाल। अगे साहो सुजान है, लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो, सहो देखे पति आए रहाओ। जिन्ना रास ना सच है, क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है, मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यो, दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवे, तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पाता है, खोट ना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना, आए गया पत खोए, नानक मन समझ आई है, गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया, पारना परम तिनाहा, हर जप लाहा अगला, निरपव हर मन माहा। श्री राग महला पहला। कर दूजा। तन जोबन अर फुलड़ा, नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यो, टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया, जा जोबन नौ हुला, दिन थोड़े थके, पया पुराना चोला रहाओ, सज्जन मेरे रंगले।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जा दुख लागे ता तुझे समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी

ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੋ।

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो। जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगार सुख वसै, ज्योतिष पावै सो होए। जिहा सतगुर कर जानिया तेहो जिहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए। नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझै नाही, अनजन दुख विहानी। मन मुखे अंध न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै, ता हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जमन मरना, मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुर की सेवा या तो सुखाली, जो इच्छा है सो फल पाए। जात सत तप पवित शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति, हौ तन कै बल जाओ। दर सच्चै सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, ज्यो दोहागण तन सिंगार। सेजै कंत ना आवई, नित नित होए खुवार। पिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार। भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए। रहाओ गुरमुख सदा सुहागणी, पिर राख्या और तार। मिठा बोले निव चलै, सेजै रवै पतार। शोभावंती सुहागणी, जिन गुर का हे त्या पार। पूरे पाग सतगुर मिलै, जा भागै का उदो होए। अंतरों दुख भ्रम कटियै, सुख प्राप्त होए। गुर कै पाणै जो चलै, दुख ना पावै कोए। गुर के पाणे विच अमृत है, सहजे पावै कोए। जिन्ना प्रभ तिन पिया, हमै विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाइऐ, सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा। जा पिर जाना अपना, तन मन अगै धरे। सुहागणी कर्म कमाम दिया, से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा, सच वडाई दे। भाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाए।

जिन कर कारण धारिया सोई सार करे गुर कै शब्द पछाणिए जां आपे नजर करे सेजन शब्दे सोहणे ते सच्चा दरबार गुरमुख सच्चा शब्द रते आप मेले करतार गुरमती सच सलाहना जिसदा अंत ना पारा वार घड़ घड़ आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार गुर शब्दी सलाही।

पूरे पाग सतगुर मिलै फिर पाया सच समाए से सहिया सोहागनी जिनको नजर करे खसम पछाणै अपना तन मन आगै दे घर वार पाया अपना हो मैं दूर करे नानक सोभावंतियां सोहागनी अनजन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावै अपना हो कह दर पूछो जाए सतगुर सेवी भाव कर मैं पर देव मिलाए सब पाए आपे वेखै किस नेड़े किस दूर जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर मुंदे तू चल गुर कै पाए आंदन रावे पिर अपना सहजे सच समाए रहाओ शब्द रतिया सोहागनी सच्चा शब्द सिंगार हर वार पायन घर अपना गुर कै हित प्यार से सुहावी हर लंग रवै भगत भरे भंडार सो प्रभु प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार पिर सालाहन अपना तिन कै हो सद बलिहार जाओ मन तन अर्पी सिर दई तिन कै लागा पाए जिन्नी एक पछाणिया दूजा पाव चुकाए गुरमुख नाम पछाणिया नानक सच समाए श्री राग महला तीजा हर जी सच्चा सच तू सबके तेरे चीरे लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरे हर जियो बख्से बख्स लय सुख सदा शरीर गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीर है मन मेरे नाम रते सुख होए गुरमती नाम सलाही है दूजा अवर ना कोए रहाओ धर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओह तेरी सरकार अध्यात्मी हर गुण तासमान जप है एक मुरार तिनकी सेवा धर्म राय करे धन सवार नहार मन के बेकार मने तजै मन चूकै मोह अभमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त ना पाई मन मुख फिरै दीवान शब्द ना चीनै कथनी बदनी करे बिख्या माहे समान सब कछ आपे आप है दूजा अवर ना कोए ज्यों बुलाए त्यों बोलिया जा आप बुलाए सोए गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द में लावा होए नानक नाम समाल तू जित सेवे सुख होए श्री राग महला तीजा जग हौ मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए मल हौ मैं धोती किवे न उतरे जे सौ तीर्थ नाए बहुविद कर्म कमावंदे दूनी मल लागी आए पढ़िया मैल न उतरे पुछो ज्ञानिया जाए मन मेरे गुर शरण आवै ता निर्मल होए मन मुख हर हर कर थके मैल न सकी धोए रहाओ मन मैले भगत न होवई नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मुए जासन पत गवाए गुर प्रसादी मन वसै मलहों मैं जाए समाए ज्यों अंधेरा दीप

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है पथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना का स्वार नहार माया काम व्यापिया समझै नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार जा होवा हुक्म किरसान दा ता लुण मिणिया खेतार पहला पहर धंद गया दूजे पर सोया तीजे चाख चखाया चौथे पोर पया कदी चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिस ते सोजी मन पई मिले।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए। मेरे मन

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार। बालक बिरद ना जानिया निचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाईऐ नेदा रायादार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत एक मन एक ते आईऐ मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात सदा सदा आराधी।

दूरह थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सचे सच्चा थान सची कुदरत धारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिया सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सोपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी नगर निहाल।

सतगुर से प्यारो, क्या थोड़ी बात गुमानो रहाओ। जैसे रैन प्राहुणे उठ चल सह प्रभात, क्या तू रता ग्रत स्यों सब फुल्ला की बागात। मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना षड जासी लख करोड़। लख चौरासी परम त्या दुलभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो। श्री राग महला पंजवा, तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जा साथी उठी चलिया ता तनखा कूराल। मन बैराग पया दर्शन देखने का चाओ, धन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वसया कंत कार।

सर्व को आधार। गुर के चरण मन मैं त्याए, छोड़ सगल सियाण पा सा शब्द लिव लाए रहाओ। दुख कलेश ना पाओ वे आपै, गुरमंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुरबिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधारै, पाप सगले जाहे हाँ तिल कै बलिहारण जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै, साच हर का नाओ सेवट पागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां, संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिंतु साज सुवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार, प्राण मंतन जिने दिया हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अहंकार माते व्यापिया संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार। सत संतोख दया कमावै एह करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवां, दो कृत सुकृत मंदे संसार सगलाना। दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी, तू मड़ पुरख सुजाना रहाओ। मान अभमान मंदे सो सेवक नाही, तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहो कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गत अवगत कश नजर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवां, कर सतवां,

अंबड़ कोई न सकई, हों किसनो पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया, जय पावे तैं दे हुक्म।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ पिरलावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै बस।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नर सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाइया बिनसा चे क्या ता।

महले पहले सतारे अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरमुख कृपा।

आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वक सुनाए। गुरमुखे आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटांब मोहे लोभाना, चल दिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिस दी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर न काई। हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अनदिन भगत करै दिन राती, हौं मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजाय, हमें तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उर धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए। नाम निदान हर मन वसै, हमें दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया, हम सद बलिहार जाओ। अपने मन चित कहे कहाई, अपने मन चित कहे कहाए, बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत मच्छर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई। नानक शोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला।

श्री राग महल्लाती जा पंखी बिरख सुहावड़ा सच उगै गुर पाए हर रस पीवै सहज रहै उड़ै न आवै जाए।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे, नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वसया मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर निचल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिर समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भक्त ना हो वही बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साला ही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है होमै जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावै कोई न मेटै भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़ै दूजा पाओ न जाणै सतगुर भेटै निर्मल होवा अंदन नाम वखाणै एको पड़ै एको ना बूझै दूजा अवर न जाणै खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन गुर परम भुलाए सतगुर सेवै तां गत मित पावै हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी सोचित लागै आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणै बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जां नाउ चेतै तां गत पाए जां सतगुर मेल मिलाए सत संगत में नाम हर उपजै जां सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से ती चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से ती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज। चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग। ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए। चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार। चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया। चित आवै उस पर ब्रह्म, ता निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे। तपित पीसर जोगिया, तीर्थ गमन करे। खटकर में खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए। रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार। बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया। चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल दीत। मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देव दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुर्ग मच पयाल जियो, हौ वारी हौ वारण, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेख किता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाजना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जिना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथियां फिरे निमाणिया, मैले वेस्त ना कामनी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्ना नो मनाया, तने अंतर शब्द वसाया, सही आसे सोहागणी, जिन सह नाल प्यार जियो, जिन्ना भाणे का रस आया, तने विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानी है, जो सब सह ले मिलाए जियो, सतगुर मिले फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करे निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिए, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर विटों घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवकी पैज रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, मेरे गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ अपना बिरस मारिया, कंठ लाए कह रखियो, न लगे ना तत्ती वाओ जियो, मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छियाड़ा फल पाया, साहा पात साहा सिर खसम तू, जप नानक जीवे नाउ जियो, तुदे आपे आपो पाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वरतदा, जिस पावे तिसे

तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी पांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर सिंह चित लाया तिनी दूजा भाव चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगियाईया मैं रात है वड़ियाईया अनमंगया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मिलाया तिह जेवड़े अवर ना कोए जियो रहाओ गोसाई महिंडा इठड़ा आमे अबे था वो मिठड़ा भैन भाई सब सज्जना तुद जिहा नाही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सतका हर जो आया नाव बीजन लगा आस कर हर बोहर बख्श जमाए जियो हाँ गुरमिल एक पछाणदा दया कागल चेतना जानदा हर एक तय कार

मात पिता सुत ने हो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटै गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जारिया मित्रा पर जो बन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जारिया मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस उलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाने आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावे सहज समावे सगले दुख मिटावे कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावे श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावे हर उचरै बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तो तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख बीचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालीवन जा रहा मित्रा ले मात